फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। दो दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7

0: विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम इंटरनेट स्ट्रीमिंग और डीटीएच पर उपलब्ध है, और इसके अलावा एंड्रॉइड और आईओएस पर हमारा एक एप्लीकेशन मौजूद है जिसका नाम है न्यूज ऑन एआईआर। इसके जरिए आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद दिन रात लगातार ले सकते हैं, और वो भी दुनिया के किसी भी कोने में।
2: ये है विविध भारती
1: वंदन वार।

चिंतन। गोस्वामी तुलसीदास का कथन है, फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के समय सज्जन भी नम्र होते हैं, परोपकारियों का स्वभाव ऐसा ही होता है। ये था चिंतन। अब भक्ति संकीर्तन।

हम विविध भारती से बोल रही हैं। झरोखा सुनिए आज दिन भर के कार्यक्रमों का लेखा जोखा। सुबह 7 बजे बोले बिसरे गीत कार्यक्रम होगा। 7:30 पर आप सुनेंगे हम ही राही प्यार के। संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला चल रही है ऐसी लागी लगन। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलोटा। आज 5वीं कड़ी होगी सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता विकी कौशल पर। यह कार्यक्रम सुबह 9:30 पर होगा और रात 9:30 पर। दिन में 1 बजे सुहाना सफर कार्यक्रम सुनिएगा, सुरीला सफर कार्यक्रम सुनिएगा। 3:30 पर आप सुनेंगे नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक शकुंतला। 4 बजे के अंतर्गत आज शाम 4 बजे जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से बातचीत का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। सुबह 8:15 पर और दिन में 2:15 पर, दिन में 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त ने। ये रिकॉर्डिंग हमारे संग्रहालय से निकालकर प्रस्तुत की जा रही है। शाम 7 बजे ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। हवा महल के अंतर्गत आप सुनेंगे कहानी पत्नी का पत्र के वाचन का दूसरा भाग।

आप सुन रहे थे विविध भारती से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम,
0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटीं, उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानी से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप कर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। आठ कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण दीनी चदरिया, दास कबीर जतन कर ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। निर्गुण भक्ति धारा के अप्रतिम कवि संत कबीर ने समाज की विडंबनाओं को उजागर किया और एक जीवन दर्शन दिया। ऐसी लागी लगन भक्ति संगीत पर आधारित श्रृंखला की इस कड़ी में एक बार फिर हम श्री अनूप जलोटा जी का स्वागत कर रहे हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आज की इस कड़ी में अनूप जी, कबीर की रचनाओं की चर्चा हम करेंगे। बताइए किस रचना, या यूं कहें कि जो हमें पसंद है, आज उसकी चर्चा करें। चदरिया जीनी रे जीनी।
2: चदरिया जीनी रे जीनी मेरे पिताजी ने बहुत गाया और बहुत लोकप्रिय किया। उसके बाद मैं भी चल पड़ा इस भजन को लेके आगे। ये भजन यूं तो राग देश पर आधारित है, लेकिन इसमें एक रागमाला प्रस्तुत की जाती है, और वो रागमाला प्रस्तुत करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लोगों में जो लोग शास्त्रीय संगीत के शौकीन नहीं थे वो इस ओर आकर्षित हो गए और शास्त्रीय संगीत सुनने लगे, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे दर्शन हम रागों के कराते हैं उससे उनका जी नहीं भरता और वो कहते हैं इसको और गाइए। इस तरह से शास्त्रीय संगीत की ओर लोग आकर्षित हुए, इसकी मुझे बड़ी खुशी है।

अर्थात शरीर ने जन्म लिया। रंगरेज रंगरेज है गुरु, गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया।

0: वाह, बहुत सुंदर। बहुत बार सुना है ये भजन, हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि पहली बार सुना और इतनी बारीकियां पता चली, कई रागों की छटा देखने को मिली। आप अनूप जी हमें बताइए, हमारे तमाम श्रोताओं को, कि ये जो रागों का खेल करते हैं, कई रागों का मिश्रण करते हैं, उसके बावजूद सरलीकरण करके लोगों तक पहुँचाते हैं भजन, ये जादू कैसे करते हैं?
1: वैसे भी राग सरल चीज है, राग कठिन चीज नहीं है। राग का मतलब है कि किसी चीज को और सुंदर बनाना। तो जब स्वरों को एक सुंदर रचना दी जाए, एक सुंदर कॉम्बिनेशन दिया जाए, तो एक राग बन जाती है। यूं ही लोगों को डरा दिया गया है कि यह क्लासिकल मुश्किल चीज है। क्लासिकल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, थोड़ा आपका कंसंट्रेशन हो तो इसका आनंद दुगना हो जाता है। आपको अगर थोड़ा सा रागों का पता लग जाए तो उसी गाने को जो आप पहले से सुन रहे हैं, उस गाने को आप ज्यादा इंजॉय करने लगेंगे, अगर आपको पता लग जाए कि ये किस राग में है। इसलिए शास्त्रीय संगीत की ओर आपका झुकना, आपका आकर्षित होना बहुत आवश्यक है, तभी आप संगीत में और आनंद ले सकेंगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी जानकारी देने के लिए। हमारे श्रोताओं का भी बहुत लाभ हो रहा होगा, और वैसे भी संगीत सरिता एक पाठ की तरह है श्रोताओं के लिए। कलम और कागज़ लेकर बैठते हैं, नोट करते हैं, और हम भी कागज़ कलम लेकर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब समय आ गया है इस कड़ी को समेटने का। ऐसी लागी लगन, भक्तिभाव पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी पांचवी कड़ी।
2: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी के प्राथमिकता दी है और उनको फ्री ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
0: भारत और संयुक्त अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे का दूसरा पड़ाव। नीदरलैंड्स भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात से हुए कई समझौते। सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर गैंगटोक पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। भूशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया स्वागत। बोले, ब्रिटेन से वापस लाएंगे मां बाग देवी की प्रतिमा। और प्रदेश में गर्मी का कहर जारी। मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। यहां एम्स्टर्डम में विदेश मंत्री टॉम वेरेंटसन ने उनका स्वागत किया। यहां के बाद प्रधानमंत्री स्वीडन, नॉर्वे, इटली भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में 5 देशों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। कल श्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के साथ साथ $5 अरब के निवेश पर सहमति बनी है।
1: और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम जाएंगे। गैंगटोक में राज्य स्थापना दिवस समारोह में वे मुख्य अतिथि होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1975 में राजशाही खत्म होकर यह भारत का 22वां राज्य बना था। धार की भूशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने भूशाला को मां बाग देवी की आराधना स्थली माना है। डॉ. यादव ने कहा है कि अब श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना का पूरा अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन में रखी मां बाग देवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे।
2: इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूँ कि न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भूशाला का स्थान था जहाँ राजा भोज ने माँ बागदेवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मध्यप्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूँ। स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो बागदेवी की प्रतिमा विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक लेकर कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाएं। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत जमीन की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करने और ग्रामीणों को मुफ्त पट्टे देने का अभियान चलाने के निर्देश दिए। डॉ. यादव ने गाँव में स्कूल, खेल मैदान और बेहतर सुविधाएं देकर शहरों की ओर पलायन रोकने पर जोर दिया। देवास के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की जांच के लिए राज्य सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया है। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े इस एकल सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता करेंगे। आयोग घटना से जुड़े 5 बिंदुओं की गहन जांच करेगा और 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवा उद्यमियों अपर्णा और दिनेश से मुलाकात की। ये युवा उद्यमी रूडा नोट्स के संस्थापक हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बने कागज के उत्पाद गुणवत्ता, कार्यक्षमता और टिकाऊपन में बेहतरीन है। मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अच्छी स्टेशनरी हमेशा से उनके दिल के करीब रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल शाम भोपाल के रविन्द्र भवन में नर्मदा चिंतन संगोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। गुड़ी पड़वा से शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान के तहत कुएं, बावड़ियां, तालाबों को फिर से उपयोगी बनाने का काम जारी है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को समर्थ नर्मदा अलंकरण से सम्मानित किया। 3 मई को पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई नीट यूजी परीक्षा अब 21 जून को दोबारा होगी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर पर उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए 2 चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। पहले चरण में 19 से 22 मई के बीच ₹700 प्रति विषय शुल्क देकर उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मांगी जा सकती है। दूसरे चरण में 26 से 29 मई के बीच गलती के सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। हर चरण में सिर्फ 1 आवेदन मान्य होगा। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। किसानों को इसके लिए 9,522 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। राज्य सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत 1,32,000 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सब्जी में 54,000, मसालों में 56,000 और फलों में 18,000 हेक्टेयर क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। किसानों को ड्रिप सिंचाई, पॉली हाउस, आधुनिक तकनीक की मदद भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं। वहीं 98% से अधिक घरों का निर्माण शुरू हो गया है। 9 लाख से ज्यादा घर बनकर तैयार हो चुके हैं और लोगों को सौंपे जा चुके हैं। मंडला जिले के रामनगर में 2 दिवसीय आदि उत्सव का आज दूसरा और आखिरी दिन है। कल केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ज्वेल ओराम ने इस उत्सव का शुभारंभ किया था। उन्होंने कहा कि आयोजन जनजातीय संस्कृति परंपराओं को जीवित रखने का बड़ा मंच है। राज्य सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1,01,00,000 रुपए का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया है। इसके साथ 21 लाख का राष्ट्रीय सम्मान और 5-5 लाख के 3 शिखर सम्मान भी दिए जाएंगे। न्याय, सुशासन, कला, शौर्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश विदेश के लोग और संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। नामांकन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। awards.mvsp.ujjain.com पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग एकेडमी की बॉक्सर माही लामा ने वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह पक्की कर ली है। एनआईएस पटियाला में हुए ट्रायल में उन्होंने 2 मुकाबले जीते। आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खंडवा में सबसे ज्यादा 45.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। 12 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने आज 37 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास के लिए तेज लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन और मंडला में रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गांव-गांव जल संरक्षण के काम हो रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर ने पद्मश्री लोक कलाकार रमेश परमार और शांति परमार की कार्यशाला का भ्रमण किया। धार में 3 दिवसीय 11वें पद्मश्री फड़के संगीत समारोह का शुभारंभ कल शाम विक्रम ज्ञान मंदिर लालबाग परिसर में हुआ। पन्ना में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शहर के वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया। खंडवा में शनिचरिया महोत्सव पर हजारों श्रद्धालु माँ नर्मदा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आगर मालवा के सुसनेर में युवा संगम रोजगार मेले में 33 सेवाओं का प्रारंभिक चयन हुआ। अशोकनगर में संपर्क अभियान के तहत बिजली संबंधी सेवाओं के लिए घर घर शिविर लगाए जा रहे हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने 72 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

बनारसी ढक फिल्म का ये गाना किसी और ही गाने की याद दिलाता है और इसे हम एक पहेली की तरह ही छोड़ देते हैं। आपको जरूर होगा ना याद आ गया होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किशोर कुमार की आवाज अब गूंज रही है, फिल्म का नाम मुनीम जी।

मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गाना है ये कार्यक्रम की आखिरी पेशकश गीत और आई की आवाज मजरू सुल्तानपुरी ओपी नैयर

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के।

ये रास्ते ही प्यार की फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में था। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, संगीत रवि का था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में संजोग फिल्म का गाना। राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत मदन मोहन का है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए

0: उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
5: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण कांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
6: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले। इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह सेफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों, परिवार कुछ लोगों के साथ रहने से ही नहीं बन जाता। इनमें रिश्तों की एक मजबूत डोर होनी चाहिए, सहयोग के अटूट बंधन होने चाहिए, एक दूसरे की सुरक्षा के वादे के और इरादे होने चाहिए। हमारा ये फर्ज होना चाहिए कि इस रिश्ते की गरिमा को हम बनाए रखें। हमारी संस्कृति में, परंपरा में पारिवारिक एकता पर हमेशा से बल दिया जाता रहा है। परिवार एक संसाधन की तरह होता है, परिवार की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं और इस संसाधन के कई तत्व होते हैं। एक पहुंचे हुए दार्शनिक दूलन दास ने कहा है, दूलन ये परिवार सब नदी नाव संजोग, उतरे परी जहते हैं चले सबे बटाऊ लोग। जैनेन्द्र ने इतस्त में कहा है, परिवार मर्यादाओं से बनता है, परस्पर कर्तव्य होते हैं, अनुशासन होता है और उस नियत परंपरा में कुछ जनों की इकाई के हित के आपस में जुटकर चलने की वजह से ही हर सदस्य अपना आत्मदान करता है और जिसकी वजह से इज्जत खानदान की होती है और इसी खानदान में हम आगे अपने भविष्य को देखते हैं।

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, परिवार वो कड़ी है जिसकी वजह से ही हर धर्म, जातियों और संप्रदायों में लोग आपस में जुड़ पाते हैं। आज के दौर में भले ही परिवार में ये देखा जाने लगा है कि छोटा परिवार लोग अपनाने लगे हों, लेकिन फिर भी संयुक्त परिवार वो आदर्श है जिसके छांव तले प्रत्येक व्यक्ति रहना चाहता है। संयुक्त परिवार में दो या तीन पीढ़ियां और कभी कभी इससे भी अधिक पीढ़ियों के व्यक्ति एक ही घर में अनुशासन के साथ एक ही रसोई घर में भोजन और जीवन की जरूरी चीजों का उपभोग करते हैं, एक ही परिवार के धार्मिक कृत्यों और संस्कारों में भाग लेते हैं। ये वो परिवार होते हैं जिसमें आदर्शों को लेकर, संभावनाओं को लेकर और व्यक्तित्व विकास की बातों को लेकर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिनकी वजह से इस परिवार को प्राथमिकता दी जाती रही है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, जब आज का ये कठिन समय जिसमें मानसिक तनाव, अकेलापन और टूटते मानवीय रिश्तों की आहटें हमें सुनाई दे रही है, ऐसे भीषण दौर में परिवार न केवल रहने की जगह है बल्कि हमारे अस्तित्व, सुरक्षा और संस्कार और संवेदनाओं को समेटने वाली मजबूत छत बनकर भी हमारे सामने आता है। आज जब जीवन की आवश्यकताओं के लिए भागदौड़ इतनी बढ़ती जा रही है कि इस चक्कर में हम अपने आप को भी झोंक दे रहे हैं, ऐसे दौर में जहां आर्थिक संकट भी गहरा रहा हो, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी हम खोखले होते जा रहे हों, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबते जा रहे हों, तो ये संकट केवल एक व्यक्ति पर नहीं टूटता। अकेलेपन से उपजा अवसाद पूरे परिवार को भी खत्म कर सकता है। ऐसे दौर में जब हम बहुत छोटे छोटे से फ्लैटों में, छोटे छोटे से पिंजरों में खुद को कैद करने लगे हों, हर तरीके से आर्थिक रूप से संपन्न होने के बावजूद भी भीतर से कंगाल हो रहे हों, तब परिवार की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। वृद्ध माता पिता उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, बच्चों संस्कारों से दूर हो रहे हैं और पति पत्नी के बीच संबंधों की ऊष्मा ऊर्जा कम होती जा रही है। ऐसे दौर में परिवार के बीच मानसिक रोग, तनाव, असुरक्षा और आत्महत्याओं की घटनाओं की बाढ़ आ रही हो, ऐसे दौर में परिवार की नामक एक संस्था की फिर से हमें उस संस्था की ओर लौटने की दरकार है।

दोस्तों, आज आवश्यकता इस बात की है कि परिवार को केवल उपभोग और सुविधा का केंद्र न बनाकर उसे आत्म जागरण का केंद्र भी बनाया जा सकता है। अहिंसा की प्रयोगशाला बनाई जा सकता है। अहिंसा का अर्थ केवल किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं है, कठोर शब्दों से बचना है, अपमान ना करना है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना है, क्रोध पर संयम रखना है और सबसे बड़ी बात संवाद बनाए रखना है और क्षमा का अभ्यास करना भी अहिंसा ही है। यदि परिवार के भीतर भाषा की कटुता, अपमान और असहिष्णुता होगी तो समाज में शांति की कल्पना कैसे की जा सकती है? परिवार वो पहला स्थान होना चाहिए जहाँ पर बच्चा सहिष्णुता और करुणा का पाठ पढ़े, सीखे और जीवन में उतारे।

0: आकाशवाणी भोपाल से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को आप 9 बजे से 9:15 के बीच भी सुन सकते हैं। अभी 8:58 होने जा रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। यहां एम्स्टर्डम में विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने उनका स्वागत किया। यहां के बाद पीएम स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार संभालने के बाद आज पहली बार सिक्किम जाएंगे। गैंगटोक में राज्य स्थापना दिवस समारोह में वे मुख्य अतिथि होंगे। धार की भूशाला पर हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने भूशाला को मां बाग देवी की आराधना स्थली माना है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में रखी मां बाग देवी की प्रतिमा को वापस भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक लेकर कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाए। प्रदेश में अब तक 11,54,000 से ज्यादा किसानों से 80,90,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। सीबीएसई ने 12वीं के नतीजों से असंतुष्ट छात्रों के लिए 2 चरणों में समीक्षा की सुविधा दी है। सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे और हर चरण में सिर्फ 1 आवेदन मान्य होगा। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खंडवा में सबसे ज्यादा 45.1 डिग्री तापमान दर्ज हुआ और 12 शहरों में पारा 43 डिग्री के पार रहा। और आईपीएल में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से मात दी। आज शाम 7:30 ईडन गार्डन्स में केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
3: विविध भारती से कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक, और ये है चित्रलोक का अगला गाना।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
3: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

मनीषा फिल्म का ये गाना आपने सुना। वरुण ग्रोवर की बोलती है अनु मलिक की तरसी। और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना अरिजीत सिंह की आवाज, फिल्म का नाम है छिछोरी। अमिताभ भट्टाचार्य, प्रीतम।

0: और ये थी आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और चलते चलते आपको एक जरूरी सूचना दे दें कि विविध भारती सृजन भारती का आयोजन कर रहा है और इस सृजन भारती में क्या होने वाला है। अगर आप मुंबई में हैं तो 21 तारीख की शाम 6:30 बजे जरूर आइए। सारा ब्यौरा इस प्रोमो में है। जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का, लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल और आज के फनकार हैं इनके बेटे जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

विकी कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विकी कौशल को फिल्मों का माहौल गुट्टी में मिला था।

डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और उसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाए। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज गायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान। और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव ते चिकन खुराना। इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

0: विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।
1: कांधे पे सूरज

0: कौशल पर शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: आकाशवाणी है, 10 बजने जा रहे हैं। आप सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। बड़वानी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में इन दिनों सूरज मानो आग उगल रहा है। जिले का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दोपहर होते होते सड़कें सुनसान नजर आने लगती हैं। गर्म हवाओं और लू से बचने के लिए लोग चेहरों को सूती कपड़ों से ढककर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि पानी की व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। खासकर जिले के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। प्रशासन क्राउलर बोरिंग मशीनों की मदद से नए पेयजल स्रोत तैयार कर रहा है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पूरी हो चुकी 5 नल जल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। दूसरी ओर जिले में गेहूं खरीदी का काम भी पूरे जोर शोर से चल रहा है। प्रशासन किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाने के साथ साथ मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी कर रहा है। इस साल रबी सीजन में गेहूं बेचने के लिए जिले से 4738 किसानों ने पंजीयन कराया था। जिले के 5 प्रमुख उपार्जन केंद्रों पर अब तक 1346 किसानों से 60,727 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। भुगतान की करीब 90% राशि यानी 14,42,00,000 रुपए सीधे किसानों के खातों में भी पहुंच चुके हैं। बड़वानी शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए नगर पालिका परिषद ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत खास अभियान शुरू किया है। नगर पालिका की IEC टीम घर घर पहुंचकर लोगों से स्वच्छता को लेकर फीडबैक ले रही है। इसी बीच जिले में लाडली उत्सव की खुशियां भी देखने को मिली। जिले के 1815 आंगनबाड़ी केंद्रों

आयोजित कार्यक्रमों में लाडली बेटियों और उनके अभिभावकों का सम्मान किया गया। वहीं शिशु मृत्यु दर को लेकर जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। कलेक्टर ज्योति सिंह ने मामलों की गहन समीक्षा करते हुए मृत शिशुओं के परिजनों से सीधे बातचीत की। उन्होंने इलाज के दौरान आई परेशानियों, स्वास्थ्य केन्द्रों पर मिली सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। न्याय व्यवस्था को आसान और त्वरित बनाने की दिशा में भी जिले में बड़ा कदम देखने को मिला है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का निराकरण किया गया। लोक अदालत में लंबे 384 मामलों में से 294 प्रकरणों का समाधान हुआ और करीब 4,82,00,000 रुपए से अधिक की राशि के अवार्ड पारित किए गए, जिससे 588 लोगों को राहत मिली। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला मुख्यालय स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में 326 युवाओं ने पंजीयन कराया। विभिन्न कंपनियों ने 68 युवाओं का चयन किया। जिले की कलेक्टर ने जलगंगा संवर्धन अभियान और जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने फॉर्म पॉन्ड, अमृत सरोवर, डगविल और वाटरशेड डेवलपमेंट के कामों की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान लापरवाही सामने आने पर 3 सब इंजीनियर्स का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए गए। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले घर घर योग हर व्यक्ति निरोग अभियान भी शुरू हो गया है। आयुष विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में रोज सुबह ऑनलाइन और ऑफलाइन योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के 27 केंद्रों पर लोग योग के जरिए खुद को स्वस्थ रखने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निवाली में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क कृत्रिम हाथ पैर शिविर लगाया गया। शिविर में 28 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया, जिनमें से 13 लोगों को मौके पर कृत्रिम हाथ और पैर उपलब्ध कराए गए। जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. गौतम टिटवाल का दौरा भी चर्चा में रहा। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठकों के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण किया। खास बात यह रही कि उन्होंने अधिकारियों के साथ कारों के लंबे काफिले की बजाय बस से यात्रा की। ग्राम ओझर में आयोजित रात्रि चौपाल में उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। इन सब के बीच जिले की बेटी स्नेहा दावदे ने बड़वानी का नाम देशभर में रोशन कर दिया है। स्नेहा जिले की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है, जिनका चयन भारत के अंडर 18 टीम में हुआ है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर नई उपलब्धि हासिल की। अब वे जापान में होने वाले एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। जिले में जनगणना 2027 की तैयारियां भी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। मकान सूचीकरण और गणना का काम तेजी से चल रहा है। कई प्रखंड को और पर्यवेक्षकों ने समय सीमा में शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर मिसाल पेश की है, जिसके लिए शासन द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। बड़वानी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

इस बार कश्मीर घूमने जाऊंगी तो खूब सी फोटो अपनी फोन गैलरी में सेव करूंगी। हो सके तो नया मोबाइल लेती हूँ जिसका कैमरा शानदार हो।

विचलित सरला कक्षा की देहरी पर खड़े होकर पूरे कॉरिडोर का मुआयना करने लगी। अपनी मनगढ़ंत योजनाओं से निकलकर जब उसने ब्लैकबोर्ड को देखा तो उसे ज्यामितीय रेखाएं किसी पेड़ की शाख जैसी नजर आईं, जिस पर नव पल्लवन होना बाकी था। सरला ने आज ब्लैकबोर्ड से नजरें फेर लीं। पीरियड खत्म हुआ, घंटी बजी और प्राचार्य ने कक्षा में कदम रखा। अरे अब ये क्यों चली आई? ये हमेशा दबे पांव ही आती हैं। मन ही मन ये बोलते हुए सरला सहजता से मुस्कुराई। क्या पढ़ाने में व्यस्त थी आप सरला मैडम? बच्चों को कुछ गृह कार्य देकर दूसरे काम पूरे करिए। वैसे क्या प्लान है? क्या कर रही हैं आप अवकाश में? प्राचार्य कक्षा और ब्लैकबोर्ड को बारीकी से देख रही थी। अरे मैडम कुछ नहीं, बस कहीं घूम फिर आएंगे। जब से सिहोरा में पोस्टिंग हुई है अप डाउन की थकान कुछ और प्लान करने ही नहीं देती। जबलपुर इतना दूर तो नहीं सरला मैडम? हाँ, घर के काम निपटाकर सही समय पर विद्यालय पहुंचना ज्यादा कठिन है। आपकी पेंटिंग्स के क्या हाल हैं? पूछते हुए प्राचार्य आगे बढ़ने लगी और सरला उनके पीछे चल दी। अरे मैडम मेरी पेंटिंग्स अधूरी हैं, इन छुट्टियों में उनकी रंगत सुधारूंगी। बहुत साल हुए कहीं गए नहीं, ये अवकाश लंबा है, कहीं जाऊंगी इनके साथ। सरला ने बात बदली, क्योंकि पेंटिंग्स तो उसने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के बाद कभी बनाई ही नहीं। अरे वाह, कहां की बुकिंग हुई? द हेवन ऑन अर्थ, कश्मीर मैडम। आज प्राचार्या भी प्रसन्न थी। यूं तो गणित पढ़ाने वाले अध्यापक उन्हें वैसे भी ज्यादा प्रिय हैं, पर त्योहारों के समय मिली सरकारी छुट्टियां किसे नहीं गुदगुदाती। इस बातचीत के बीच सरला को याद आया वो सफेद कैनवस जो प्राचार्य महोदया ने पिछले वर्ष उसे उपहार में दिया था। वो घर के गलियारे में यूं ही पड़ा पड़ा पिलिया रहा है। वो कैनवस और रंग जो उसे जन्मदिन पर उपहार में मिले थे उसने आज तक नहीं छुए। विद्यालय में सभी सरला की प्रज्ञा और चित्रकारी से परिचित और प्रभावित थे, पर घर और विद्यालय के बीच की खींचतान में वो कैनवस कोरा ही रहा।

स्टाफ रूम में एक बच्चे की कॉपी पे नजर दौड़ाते हुए सरला का ध्यान अचानक उसके हाथ की खुश्क पड़ती चमड़ी पर गया। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा। साथ बैठी हिंदी की अध्यापिका सरला को अपने हाथों पर वैसलीन मलता देखकर बोली, सरला मैडम, इन हाथों में अब नमी की उतनी ही कमी है जितनी आपके जीवन में आनंद मंगल की। ये बात सरला को मधुमक्खी के डंक सी चुभी। क्या कमी है उसके जीवन में आनंद मंगल की? कभी प्रतिकार न करने वाली सरला ने आज उत्तर दिया, आप तो बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती है मैडम, ये भी कोई मजाक हुआ? मेरे जीवन का आनंद मंगल आप क्या समझेंगी? सरला झुंझला उठी, अरे मजाक कर रही हूं, ये चिड़चिड़ापन तुम पर हावी होता जा रहा है, इतनी खिन्नता अच्छी नहीं, विनोद की भी कमी है तुम्हारे जीवन में। ऐसा है मैडम कि घर हो या विद्यालय, लोग मेरे स्वभाव में उपजी खिन्नता का कारण उनके विवेक और परिस्थिति के अनुरूप खोज लेते हैं, समानुभूति कोई नहीं रखता। अरे तुम घर के उलझे समीकरण भले न सुलझा सको, पर गणित की कक्षा में हर समीकरण का हल खोज लेती हो। हिंदी की अध्यापिका ने सरला का मन ये कहकर बहलाना चाहा। उम्र का ये 45वां साल सरला के लिए कुछ उलझन भरा था। उसके तन और मन का बदलता ताप कभी उसे अफसोस से भर देता तो कभी भावातिरेक से। उसकी बेटी कुहू भी दिल्ली जा चुकी थी और अब उसके साथ शाम को हंसी चिठोली करने वाला कोई नहीं था। शायद प्री मेनोपॉज भी सरला को परेशान कर रहा था। कॉपी करेक्शन पूरा करते हुए सरला सौम्य अंदाज में बोली, मैडम

0: आज मैं घर लौटते वक्त किसी अच्छी कंपनी की क्रीम खरीदूंगी। ये वैसलीन अब चिपचिपी लगती है। आज का दिन यूं तो सबके बीच अति उत्साह में बीता, पर उसकी नजर अपने रूखे हाथों पर बार बार जाती रही जाती रही। शाम को जब लंबे अवकाश की आश्वस्ति लिए वो बस अड्डे पर पहुंची तो वहां बस और मनपसंद खिड़की वाली सीट उसका इंतजार कर रहे थे। बस में सफर करते हुए सरला ने अपना फेसबुक अकाउंट खोला। वहां उसे दिखे कुछ अनजाने खिलखिलाते चेहरे जो बिना पति भाई बहन या प्रेमी के यात्रा पर निकले थे। वो रोमांच से भर उठी। धुंधली नजर आती उन तस्वीरों में कुछ स्त्रियां तो उससे भी बड़ी उम्र की मालूम होती थीं। ये सब देखते देखते कब बस आधारताल चौराहे तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। शायद इस बार भगवान उसकी छुट्टियां मंगलमय रखेंगे और वो अपने परिवार के साथ भारत के स्वर्ग कश्मीर को देख सकेगी। ये सोचते हुए वो बस से उतरी और उसने रिक्शे वाले को रोका। सुनो भैया, पहले बाजार का काम करूंगी, उसके बाद तुम मुझे सुंदर कॉलोनी छोड़ देना।
1: देखो, हम 150 रुपया लेंगे।
0: ठीक है चलो। आज सरला को कोई फिक्र नहीं थी। उसने कई दिनों से एक लिस्ट बना रखी थी और आज इसीलिए वो पर्स में पैसे रख के निकली थी। उसने सोच लिया था कि वो रिक्शे वाले को घर आने से थोड़े पहले ही रोक देगी ताकि अम्मा को लगे कि वो पैदल ही आई है। आज उसे ब्रश खरीदने थे, रंग खरीदने थे, अच्छे ब्रांड की क्रीम लिपस्टिक खरीदनी थी। उसकी लिस्ट में तो बहुत कुछ था, पर ये सब खरीद कर उसे शाम 7 बजे से पहले घर भी पहुंचना था। सरला को लगा कि रिक्शा कर ही लिया है तो वो अपने सारे काम निपटा लेगी। विद्यालय में सब उसे कंजूस कहते हैं। अब कौन बताए इन स्टाफ रूम में बैठी अध्यापिकाओं को कि रिक्शा या ऑटो से घर जाने पर अम्मा का मुंह फूल जाता है। उनके हिसाब से बस स्टॉप से घर तक पैदल आया जा सकता है। 1 किलोमीटर की दूरी दूरी नहीं होती। रिक्शे में बैठी सरला सोचती रही कि उसे घर के गलियारे में पड़े पिलियाते कैनवस को सूर्योदय की रोशनी से रंगना है। किसी दिन प्राचार्य ने तस्वीर दिखाने को कहा तो वो झूठी साबित हो जाएगी। यूं भी सरला को उकेरना था उस कैनवस पर एक चलचित्र जहां साल के सघन जंगलों के बीच एक नदी बहती हो, वृक्ष के आसपास सफेद बटन वाले कुकुरमुत्ते हों, धरती पे हरी लंबी घास हो और वहां विश्राम करती एक स्त्री हो। पर ये सब कब और कैसे होगा, ये सरला की दिनचर्या सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी। अम्मा ने तो कैनवस को फालतू का सामान समझकर यूं भी कमरे के पीछे बने गलियारे में रखवा दिया था। इन विचारों से मुक्त होकर सरला ने मोबाइल पे आया संदेश देखना चाहा। सरला की आंखें बिना चश्मा पहने साफ नहीं देख पा रही थीं। शायद कुहू ने कुछ भेजा था। आज वो चश्मा क्या भूल गई, आधी दुनिया उसे धुंधली नजर आ रही है।

ब्यूटी स्टोर तक पहुंचने से पहले इतनी देर से शांत पड़ा मोबाइल बजा। हेलो मम्मी, कहां हो आप? आप टेक्स्ट रिप्लाई क्यों नहीं करती? हाँ बेटा, मैं बस तुझे कॉल करने ही वाली थी। रिक्शे से उतर रही हूं। आज मैं वाकई अपनी संरचना में अधूरा रह गया। कुहू हमेशा की तरह जल्दी में थी। क्या मम्मी, आपने अभी तक अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया? मैंने तो आपको टेक्स्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी है, थीम पार्टी है मम्मी, आप समझती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, 7 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी, फिर बात करती हूँ। नहीं मम्मी, आप मुझे तुरंत 10,000 रुपए भेज दो, मैं मॉल में ही हूं, ड्रेस सिलेक्ट कर चुकी हूं। 10,000? अरे ऐसे कितनी ड्रेस ले ली तूने? मैं बिलिंग काउंटर पे हूं मम्मी, वेट नहीं कर सकती, अब जल्दी पैसे भेजो यार। ठीक है कुहू, मुझे बताती जा बेटा कि ये पेमेंट कैसे करना है, कहीं जल्दीबाजी में किसी और को पैसा ना पहुंच जाए। सरला पर्स में नगद ही रखती थी, वो भी जरूरत का। यूपीआई पेमेंट पति ही करते थे। अरे मम्मी, ऐप खोलो, फिर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरा नंबर है ना, बस उसी नंबर को क्लिक करो, मैं कॉल पर हूं। सरला ने धुंधले चश्मे से कुहू का नंबर खोजा, 10,000 का अमाउंट डाला और डरते हुए ओके के बटन को दबाया। अगले ही मिनट में कुहू चहकी, आ गया अमाउंट मम्मी, शाम को बात करेंगे, ओके बाय। अब सरला ने कोई महंगी क्रीम खरीदने का प्लान किसी और दिन पर टाल दिया और जैतून के तेल के गुणों के बारे में सोचते हुए रिक्शे वाले से बोली, भैया रिक्शा सुंदर कॉलोनी की तरफ मोड़ लो, और हाँ वो जलेबी वाले की दुकान पर रुकना। खोए की जलेबियां उसके घर में सबको बहुत पसंद है, वो जब भी देर से घर लौटती है जलेबियां ले लेती है। अम्मा का मुंह खोए की जलेबियां देखकर नहीं भूलता। जीवन के इस पड़ाव तक आते आते सरला समझने लगी थी कि जरूरतों का मुंह बंद करने के लिए लगातार अर्थोपार्जन में जुटे रहना भी जरूरी है और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना भी। संयुक्त परिवार में प्रेम विवाह कर आई सरला के जीवन की धुरी उसका घर और विद्यालय था, पर घर और विद्यालय की कई धुरियां थीं। सरला जीवन के कुछ समीकरण बहुत देर से समझ रही थी। बस बस भैया, रिक्शा यहीं रोक दो। सरला अपने घर से पहले वाले मोड़ पर सामान लेकर उतर गई। शाम के 7 बज रहे थे। संध्या की दियाबाती सरला ही करती थी। तेज कदम बढ़ाकर जब सरला घर पहुंची तब तक नीलकांत घर लौट चुका था। अम्मा कुछ कहें इससे पहले सरला ने खोए की जलेबी का डिब्बा अम्मा को पकड़ा दिया, साथ में ताजा मुंगोड़े भी थे। सरला नील को देखते ही चहकी, पता है सरकार ने दीपावली का उपहार पहले ही दे दिया। इतनी वाक्य फिर अपनी संरचना में अधूरे रह गए। इतनी देर से लौटी तुम? अम्मा कितनी बार दरवाजे तक जाकर लौटी, एक कॉल ही कर देती अगर इतनी देर हो रही थी तो। नीलकांत का स्वर खींचा हुआ था, जाने क्यों। अच्छा किया जो जलेबियां लेती आई, नहीं तो बेचारे नील को दौड़ना पड़ता। अम्मा सरला के देर से घर लौटने पर नाराज नहीं थी, ये बात थोड़ी अजीब थी, पर नील का मूड क्यों उखड़ा हुआ है, ये बात सरला की समझ से परे थी। हाथ पैर धोती सरला सोच रही थी कि क्या ये वही नील है जो 20 बरस पहले उसके लिए बस में खिड़की वाली सीट रोक कर रखता था। उसे बताया था सरला ने कि अगर वो खिड़की वाली सीट न चुने तो उसे मिचली सताती है।

बस फिर क्या था, नील ने बस कंडक्टर के साथ साठ गांठ करके बस की सबसे आगे वाली सीट अपने और सरला के लिए बुक कर दी थी। वो बैंक में पदस्थ था और सरला की नियुक्ति शिक्षा कर्मी के तौर पर हुई थी। दशहरा और दीपावली के अवकाश के दौरान नीलकांत किसी रविवार सरला से मिलने जरूर चला जाता था। बस इसी बीच विवाह का ख्याल सरला के परिवार वालों को यूं भी आ गया कि नीलकांत को दहेज से नफरत थी। नीलकांत सरला के एमएससी गणित से इतना प्रभावित था कि वो इसके आगे कुछ जानना समझना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी में तो वो लग ही चुकी थी। दोनों ब्राह्मण परिवारों को इस विवाह से कोई समस्या नहीं थी। सरला को नील की आंखों में अपने लिए प्रशंसा और सम्मान मिला और नीलकांत को मिली सरल सरला, जो उसकी बहनों की परवरिश में उसकी सहभागी बनी। अब क्या करने लगी सरला, चौके में घुसो, आज जीजी की ननद ननोई आ रहे हैं खाने पर। उनके परिवार में एक अच्छा कमाऊ लड़का है अपनी मिली के लिए। नीलकांत की पुकार सुन सरला वर्तमान में आ गई। हमेशा से नीलकांत की तीन छोटी बहनों की जिम्मेदारी नीलकांत की ही थी। पहली दो तो आराम से ब्याह गईं, पर नीलकांत की सबसे छोटी बहन मिली के लिए वर मिलना लगभग असंभव होने लगा था। न शिक्षा, न रंग रूप, न कोई कला कौशल, न कुछ करने की चाह। आलस्य से भरी 32 साल की मिली के लिए नीलकांत और उसकी अम्मा पिछले 10 साल से योग्य वर खोज रहे थे। अम्मा ने चौके में सरला को सुनाते हुए कहा, मिली को अच्छा दहेज देकर ब्याहूंगी ताकि उसे कोई ससुराल में दबा न सके। सरला को पूड़ी का आटा गूंथते हुए नजर आ रही थी कश्मीर की वो रील्स जो उसे कुहू भेजती रहती है। सरला और नील के जीवन में जिम्मेदारियों का हरा पौधा अब परजीवी बन चुका था। एक ऐसा परजीवी जो सरला और नीलकांत के बीच सदैव कुछ लेने के लिए खड़ा रहता। मेहमानों की रवानगी के बाद अम्मा और नीलकांत पूरी बातचीत का मुआयना करने बैठ गए और सरला घर के गलियारे में रखे कैनवस को साफ करने लगी। कैनवस पूरी तरह से बदरंग हो चला था।

तब उसकी नींद टूटी। ओ, घड़ी में 8 बज रहे थे। बैठक में नीलकंठ और अम्मा चाय के साथ बासी पूड़ियों का नाश्ता करते बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। अम्मा ने उसे चाय का कप मुस्कुराते हुए थमाया। क्या हुआ अम्मा, आप जगा देती मुझे? सरला ने बैठक में बिखरे कुशन समेटते हुए कहा। अरे सरला, अपने तो भाग ही खुल गए, मिली के लिए हाँ कह दी उन लोगों ने। भले लोग हैं, बस इतना चाहते हैं कि विवाह धूमधाम से हो और स्वागत सत्कार में कोई कमी ना रहे। मतलब अम्मा? मतलब ये कि अपनी अपनी पेंशन निधि से या फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकलवाने की अर्जी दे दो। सोने का भाव तो आसमान चढ़ रहा है, लड़की को सूने हाथ तो नहीं भेज देंगे ना। फिर शादी भी तो जबलपुर में नर्मदा पैलेस से करना चाहते हैं वो लोग। सब कुछ मिलाकर 20 लाख रुपए तो चाहिए, क्यों नील? जी अम्मा, इतने तो लग ही जाएंगे। नीलकंत यूं भी अपनी अम्मा की हर बात से सहमत ही रहता था। अम्मा, 35 साल की उम्र में शादी करने वाला इतना टीम टाम क्यों चाहता है? सोचिए, प्राइवेट नौकरी है उसकी, क्या वो खुद 20 लाख का लोन लेने की ताकत रखता है? 20 लाख सुनते ही सरला का मन घबराने लगा। ये सब ज्ञान की बातें हैं सरला, सबको नीलकंत नहीं मिलता, इतना तो करना ही पड़ेगा। अभी से अर्जी दे देंगे तो पीएफ से तुम्हारा और मेरा फंड 1 माह के भीतर निकल जाएगा सरला, तुम चिंता मत करो। नीलकंत सब सोच चुका था। मिली अपनी बिखरी अलमारी आज बरसों बाद सहेज रही थी। शायद अम्मा ने उसे बता दिया था कि अब उसे नई रेशमी साड़ियां खरीदनी और पहननी हैं, जिन्हें पहनकर वो सुंदर दिखे। अम्मा ने आज खुशी खुशी चौका संभाला, एक बार भी सरला को आवाज नहीं दी। नीलकंत बैंक अकाउंट चेक करते रहे और सरला, वो बैठ गई रंगों और कूचियों के साथ उस कैनवस के सामने जिसे उसने 1 साल से नहीं छुआ था। सारा दिन घर ठहाकों से गूंजता रहा और सरला उकेरती रही पहाड़, पेड़, नदियां और कुकुर मुत्ते। एक स्त्री जो सरला की कल्पनाओं में थी, वो कैनवस के लैंडस्केप में अनुपस्थित थी। सरला, तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? चलो बाजार चलो, सोने का भाव आसमान छू रहा है, मिली और अम्मा तैयार हो गई हैं। नीलकंत तब तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग लिमिट चेक कर चुका था। उसका उतावलापन बता रहा था कि अब वो रुकेगा नहीं। नहीं नीलकंत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे 2-3 दिन बाद एक ट्रिप पर जाना है जिसका पेमेंट मैं कर चुकी हूं। पगला गई हो क्या? कौन सी ट्रिप सरला? अरे घर में 2 महीने में शादी है और तुम ये सब क्या सोच रही हो? हम कश्मीर अगले साल चले जाएंगे, वैसे भी टिकट्स कंफर्म नहीं हुई थी इसलिए मैंने कैंसिल कर दी, कम से कम रिफंड तो मिल गया। इस वक्त सरला को वो सारी यात्राएं याद आने लगी जो यात्रा के 2-3 दिन पहले रद्द हो जाती थी। कभी अम्मा बीमार हो जाती थी, कभी जीजी अपने बच्चों के साथ मायके आ जाती थी, कभी बहनों की शादी का बोझ था तो कभी मकान की प्लानिंग। नीलकंत की लिस्ट में सरला के साथ सिर्फ सब्जी खरीदने जाने का प्लान था, क्योंकि सरला मूल भाव में कच्ची थी। चलो भी तैयार हो जाओ। नीलकंत को पता था सरला को मनाना समझाना बहुत कठिन नहीं, आखिर बिन दहेज के ब्याह लाया है उसको। नील, मैं अकेली जाऊंगी ट्रिप पर, सरकार ने लंबा अवकाश दिया है, पहले कुहू के पास दिल्ली जाऊंगी और फिर वहां से निकलूंगी एक समूह के साथ। सुनो यार, मैं समझता हूं कि हमारे कश्मीर न जाने के प्लान से तुम अपसेट हो रही हो, पर जरा सोचो, ये भी कोई वक्त है अपने बारे में सोचने का? मिली, अम्मा और जीजी सब क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे नील, क्योंकि उनको तो पीएफ से पैसा चाहिए। तीसरी बार पीएफ से पैसा निकालने के बाद इस अकाउंट में जूठन ही बचेगी कुहू और मेरे लिए। सरला का स्वर स्पष्ट था। अम्मा और मिली गलियारे की देहरी पर खड़े चुपचाप ये बातचीत सुन रहे थे। जाओ नील, अम्मा और मिली इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ बहस में मत पड़ो। एक खुशनुमा दिन तनाव से भर उठा था। अम्मा और मिली नीलकंत का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गए। सरला बहुत देर तक अपने उकेरे चित्रों को देखती रही।

कहां है वो इस परिवार में, नील के जीवन में? उसकी इच्छाओं का कभी कोई मूल्य क्यों नहीं रहा? संभवतः इसलिए क्योंकि उसने हमेशा हां कहा। उसने कभी अपने लिए जीना नहीं सीखा। मोबाइल चलाया तो यूपीआई से डरती रही, सैलरी मिली तो डेबिट कार्ड रखने से

करती रही। बाहर निकली तो अम्मा के डर से रिक्शा नहीं किया और तो और कभी अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। बिना दहेज के विवाह को वो खुद पर किया गया एक एहसान मान बैठी। अब तो उसके जीवन का आधा पड़ाव पार हो चुका है। अगर आज भी वो भय के साए में जीती रही तो अपने लिए कब जिएगी? क्या आज भी वो वही करेगी जो सब करना चाहती? आज पहली बार सरला ने जोर देकर कहा, नहीं, मैं अपना जीवन दूसरों की आशा के अनुरूप नहीं जी सकती। मैंने आज तक अपना हर कर्तव्य निभाया है, पर अब मुझे अपने मन की भी सुननी है। मैं परिवार छोड़कर तो नहीं जा रही जो कोई ग्लानी पाल बैठूं। उसने कुहू का नंबर डायल किया। कोई जवाब नहीं आया, शायद वो व्यस्त हो। बैठक में आराम से पैर फैलाकर बहुत देर तक सरला लिली फीमेल ट्रैवलर्स का वो वेब पेज देखती रही जिसे वो पिछले 2 साल से फॉलो कर रही थी। उसने चश्मा लगाकर देखा तो तस्वीरों में उसे अम्मा की उम्र की स्त्रियां भी नजर आईं। कैसे खिले खिले से चेहरे थे उन सबके। वो कब इस तरह से खिलखिलाएगी? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ सरला के पास था। इस वेब पेज पर कुछ स्त्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए वीडियो भी डाले थे। कैसी विचित्र बात है कि सबकी यात्रा संकोच और भय से ही शुरू हुई थी। और सरला की वो यात्रा कैसे शुरू होगी? यकीनन वो एक असहमति से शुरू होगी। सरला ने थरथराती उंगलियों से अपने डिटेल्स भरे और लिली फीमेल ट्रेवलर्स के साथ यात्रा पर जाने की स्वीकृति और राशि दोनों ही भेज दी। अब उसके अकाउंट में जितने पैसे थे वो इस समूह के साथ यात्रा करने के लिए पर्याप्त थे। मिली के विवाह में जो खर्च होना है वो उसे रोक नहीं सकती, पर अपनी कमाई से वो खुद को खुशी के कुछ लम्हे तो दे ही सकती है। सरला आज सच में खुश थी। उसने एक बड़ा UPI पेमेंट अपने लिए किया था। उसने नीलकांत को ना कहा था। आज पहली बार उसने खुद को चुना था। जब नील, अम्मा और मिली बाजार से लौटे तो सरला सूटकेस की धूल झाड़ पहुंच रही थी और उसने अपने ट्रैवल डिटेल्स भी कुहू और नीलकांत को भेज दिए थे। आज सबकी आंखों में एक प्रश्न था, पर सरला की आंखों में नई यात्रा पर जाने की चमक थी। आज उसे रोकने का साहस किसी में भी नहीं था।

जीवन एक सरल रेखा, ये थी श्वेता उपाध्याय की लिखी कहानी। वाचन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3:00
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
0: रंग तरंग
3: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान का लिखा यह गीत। संगीत सपन जगमोहन का है।

देश में निकला होगा चांद और मधुर मन में गीत गाता होगा। सुनते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में भरत व्यास का लिखा ये गीत। संगीत रमेश नायडू का है।

मन अड्डे के स्वर में आपने सुना ये गीत श्याम सागर का संगीत था। और अब सुनते हैं इंद्राणी रिजवी और राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। कलाम डॉक्टर बशीर बद्र का है और संगीत है बेनी सतमाकर का।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटनी शो। मैटनी शो में आज बातें और गाने उन फिल्मों के जो अपनी रिलीज के बरस के मुताबिक आज उम्र के खास पायदान पर जा पहुंची हैं, यानी साल 2026 में या तो पहुंच चुकी हैं या पहुंच जाएंगी। रिलीज से अब तक 25 बरस या 50 बरस का सफ़र पूरा कर चुकी हैं या कि आने वाले महीनों में पूरा कर लेंगी ये फिल्में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म लगान की। साल 2001 में रिलीज़ हुई ऐतिहासिक खेल ड्रामा फिल्म लगान, निर्माता आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर। इस फिल्म की पृष्ठभूमि थी ब्रिटिश शासनकाल, जिसमें एक छोटे से गांव के लोग करों के बोझ से दबे हैं और उस पर सूखा पड़ जाता है। ऐसे में एक घमंडी ब्रिटिश अधिकारी उनके सामने क्रिकेट खेलने की शर्त रखता है। गांव वालों के लिए ये बिल्कुल नया खेल है, उन्हें क्रिकेट सीखना भी होगा और जीत के लिए खेलना भी होगा। फिल्म की कहानी आशुतोष गोवारिकर ने लिखी थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी आमिर खान और ग्रेसी सिंह ने। चुनौतीपूर्ण कहानी को फिल्म का रूप देने में कई चुनौतियां आईं और आखिरकार ये फिल्म 15 जून 2000 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। देखते ही देखते साल 2001 की सफलतम फिल्मों में शुमार होने लगा फिल्म लगान का और जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक खास मुकाम बनाया इस फिल्म ने। साथ ही मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद एकेडमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की कैटेगरी में नामांकित होने वाली फिल्म भी ये बन गई। गीत संगीत बहुत मधुर था, चलिए इस गीत की एक झलक सुनते हैं।

मायूसी के वक्त में करुण पुकार बनकर ऊपर वाले को पुकारने वाली ये प्रार्थना वाकई बहुत हिट हुई और साथ ही फिल्म लगान भी आज भी प्रासंगिक है और इसके गीत तो और भी धूम मचाते रहे हैं। फिल्म का संगीत दिया था ए आर रहमान ने, तो आइए अब सुनते हैं ये गाना।

उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और श्रीनिवास की आवाज़ों में जावेद अख्तर का लिखा यह गीत आपने सुना और हमने जैसा कि बताया था एआर रहमान का संगीत था इस फिल्म में। और अब अगर हम बात करें तो बात हो रही है उस फिल्म की जो जून में ही रिलीज़ हुई थी, 15 जून 2001 को, और काफ़ी हिट हुई थी। ये फिल्म थी गदर। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित ये फिल्म शक्तिमान तलवार की कहानी पर आधारित थी, जिसमें ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा का ताना बाना बुना गया था। 1947 की पृष्ठभूमि में घटित होती घटनाओं के बीच तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी कैसे परवान चढ़ती है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचती है, यही इस फिल्म में दिखाया गया था। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, लिलिट दुबे और उत्कर्ष शर्मा ने। 25 बरस पहले रिलीज हुई ये फिल्म, इसके संवाद आज भी लोगों की जुबान पर हैं और साथ ही इसके गीत भी अक्सर गुनगुनाए जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

और ये जो गाना आपने सुना गदर फिल्म का उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार की आवाजों में था, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत था और उत्तम सिंह का संगीत था। 2001 से अब चलते हैं 1976 की ओर। फिल्म चरस, एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने बनाया था। फिल्म में धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी का जादू सिर चढ़कर बोला और साथ में नजर आए अजीत, अमजद खान, अरुणा ईरानी और असरानी। नशे की तस्करी के काले पहलू को दर्शाती हुई ये फिल्म बहुत हिट रही और इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनते हैं ये गाना।

ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, आनंद बख्शी की आवाज़ शुरू में गीत के आपको सुनाई दी होगी, और आनंद बख्शी का ही लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। 1976 की फिल्मों की बात हो रही है तो कई फिल्में इस साल रिलीज हुई थीं, नागिन, लाला मजनू, कभी कभी, 10 नंबरी, हेरा फेरी, चरस की तो हमने बात की अभी, फकीरा, कालीचरण, माँ, दो अनजाने, नहले पे दहला, शंकर दादा, बारूद, चिच्चोर, छोटी सी बात, ये सभी फिल्में काफ़ी हिट रही थी। हालांकि फिल्में तो बहुत सारी रिलीज हुई थी, लेकिन हम उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी भीड़ बटोरी थी। अब बात कर रहे हैं फिल्म बारूद की, जो 2 अप्रैल 1976 को रिलीज हुई थी। बारूद फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अशोक कुमार, ऋषि कपूर, शोमानंद, अजीत और रीना रॉय, और इस फिल्म का संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

बारूद फिल्म का ये गाना बना आज के मैटिनी शो की आखिरी पेशकश। अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए ₹50 करोड़ का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹30 करोड़ तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आमने सामने फिल्म के इस गीत से। मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

शोर मचाते मनमोर के अंदर एक सवाल। आसरा फिल्म का ये गाना लेकर आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यादों के महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आए दिन बहार के फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इसी जोड़ी का एक और गीत सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गाना, और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में चलते चलते राजा जानी फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

नमस्कार। मई की ये तपती हुई दोपहर शीतल छाँव में बदल जाएगी जब शुरू होगा एक सुरीला सफर, जो कि बस शुरू ही हो गया है। आज है इस कार्यक्रम में आप मेरे यानी राजुल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सादर नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम जो इबारत या टेक्स्ट या वाक्यांश पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, उसी में वो शब्द समाए होते हैं जिनमें जिन पर कोई गीत सुना जा सकता है, और वो गीत आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन से शब्दों पर गीत सुने जा सकते हैं। तो वे बता दें कि आज भी बहुत सारे अंदाजे लगाए गए हैं, और सच में हमारी और आपकी पसंद तो काफ़ी मिलती जुलती सी लग रही है। वैसे अगर आपका हमारी लिस्ट से मैच कर जाए गाना तो वाह वाह, और मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आपने जो बताया है, हो सकता है वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर ही लिए जाएं। तो अब आज की इबारत हम आपको बताए दे रहे हैं उन सभी श्रोताओं के लिए भी जो फेसबुक पर नहीं देख पाए हैं। आज की इबारत है, जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं, मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, कभी किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। हाँ तो भाई, रोशनी को लेकर अपने अपने विचार, अपनी अपनी बातें आप सबने रखी हैं, और बहुत सारे ऐसे भी संदेश हैं जिनमें जीवन से जुड़ी हुई बातें छिपी हुई हैं। क्या बात है, संदेशों तक हम आए तब तक एक सवाल पूछ लेते हैं कि रोशनी के लिए हमारे एक श्रोता ने कहा भी है कि शुरुआत हुई थी सूरज की रोशनी से, और उसके बाद बात सूरज की रोशनी की होते होते दिए की रोशनी पर पहुंच गई। सूरज का महत्व अलग है, वो प्रकाश ही नहीं देता, प्राणियों को ऊर्जा भी देता है, जीवन देता है। बिना सूरज के जीवन की कल्पना भी बेमानी है। रही बात दिए की रोशनी की, तो सूरज के छिप जाने के बाद अंधेरे से लड़ने का प्रबल शस्त्र यदि है तो दिया ही है, जिसकी रोशनी में हम कुछ ताने बाने बुनते हैं और जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। वाकई दिया सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में जलता है, लेकिन रोशनी तो देता है, और बहुत सी बातें भी रोशनी देती हैं। तो दिया की बात चली है, तो हमें ये बताइए कि क्या वो वक्त याद है जब, अभी तो हम बिजली का उपयोग करते हैं और बड़े धड़ल्ले से बत्ती जलाते हैं, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इन्वर्टर की भी बात कही है। वैसे जब इस बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त दिए के अलावा एक और चीज़ थी जो बहुत सारे घरों में जलती थी। अगर आपने वो देखा हो या उसका नाम याद आ रहा हो तो हमें ज़रूर बताएं। एक संदेश है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्दों का अनुमान लगाना बहुत रोमांचक है। जलते सूरज और रोशनी के शब्द पर तो कई शब्द हो सक कई गाने हो सकते हैं। वाह क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि रोशनी सिर्फ अंधेरों को दूर करने का नाम नहीं, बल्कि ये उम्मीद, विश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, हर तरफ एक नई ऊर्जा फैल जाती है। रोशनी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में हमेशा अपने भीतर उम्मीद और अच्छाई की रोशनी जलाए रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता का संदेश है, आसमान से जब रोशनी आती है तो वो जर्रे जर्रे में बिखर जाती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। सुबह सवेरे की रोशनी कितनी सुखद होती है, मगर जो जो धूप चढ़ती है ये रोशनी आंखों को चुभने लगती है, खासकर गर्मी के दिनों में। अगर देखें तो जीवन और रोशनी में बहुत सारी समानताएं हैं, दोनों में ही चुनौती होती है। रोशनी के साथ जुड़ा है धूप छांव का खेल, रोशनी एक उपहार है, अगर ये ना हो तो जीवन कैसा हो जाए। और बाकी सब तो परीक्षा है, ये डर, ये मंजिल तक पहुंचने की सुगबुगाहट। रोशनी को जीवन से जोड़ने का हुनर सीखिए, कभी कभी ये रिश्तों को संजीवनी देने का भी काम करती हैं। क्या बात कही।
तो अब कार्यक्रम का ये गाना बताइए, किनके स्वरों में ये गाना है?

0: सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम।
1: बहुत खूब जवाब आ गया। परिणय फिल्म का गाना, जयदेव का संगीत और शर्मा बंधु की आवाजें थी ये इस कार्यक्रम में। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, धूप ज्यादा है, गर्मी बहुत है, मगर काम तो करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जैसे हमारे किसान हमारे लिए खेतों में अनाज उगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमें खाना मिले इसलिए किचन में हमारी माँ बहन बेटी और पत्नी इतनी गर्मी में खाना पकाती है। वाकई गर्मी तो बहुत है। अब सवाल के जवाब की बारी है। हमने पूछा था कि बिजली के आविष्कार के पहले दिए के अलावा कुछ चीजें और भी जलती थी और कई चीजों के नाम हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता कह रहे हैं मिट्टी के तेल पर चलने वाला कंदील। एक साथी ने लिखा है डिबरी जलती थी, लालटेन की रोशनी एक साथी का जवाब है। और एक और श्रोता ने बताया कि लालटेन, और लालटेन के पहले थी चिमनी कांच की बोतल में थोड़ा सा घास लेट भरकर एक नाड़ी की बत्ती बनाकर जलाते थे। सुबह उठते थे तो उसका धुआं हमारी नाक पर जम जाता था, इसे ही शायद डिबरी कहते हैं, है ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जब बिजली नहीं थी तब विकल्प में लालटेन, पेट्रोमैक्स और मशाल से रोशन किया जाता था। भाई ये तो बात है ही है कि कई बार जब हमें वो पुरानी चीज़ें याद आती हैं, लालटेन जलाने में जो मशक्कत करनी पड़ती थी, कई बार बत्ती चली जाने के बाद, जब बिजली चली जाती थी उसके बाद जब लालटेन जलाई जाती थी तो उसका भी एक अलग ही अनुभव होता था। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की गर्मी को शीतल चांद ही ठंडा कर सकता है। वैसे ही जीवन में ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में धन्यता मानते हैं, उन्हें शांत और संयमित रहकर शांत कर देना चाहिए। संदेशों की बात करें तो एक और संदेश है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ धूप या रोशनी जीवन के अनुभवों और संघर्षों का भी प्रतीक है जो इंसान को निखारती है। रोशनी हमें स्पष्टता देती है, जैसे भौतिक

रोशनी में हमें चीजें साफ दिखाई देती हैं। वैसे ही ज्ञान की रोशनी हमें सही और गलत में अंतर करने और जीवन के सही फैसले लेने में समझ देती है। एक बड़ा सा संदेश है, काफी सारगर्भित बातें लिखी हैं, हम समय की कमी के चलते थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे। ये अंधेरे और उजाले का क्रम अपने जीवन के सुख दुख के समान ही लगता है, उनके बीच भेद केवल साम्यक के साथ ही अनुभूति परक ही है। दूसरे महत्वपूर्ण भेद जो नजर आते हैं वो ये है कि एक अंधेरे को दूर करने के लिए हमें दीपक जलाने जैसे प्रयास स्वयं करने पड़ते हैं, दूसरे में स्वस्थ प्रकृति से स्वस्थ ऋतु चक्र के चलते सामयिक षड ऋतुओं का चक्र सतत चलता रहता है। आगे लिखते हैं ये कि जब हम ही अपने अज्ञान परक अंधेरे को दूर करने के प्रयास की तरह ही पर्यावरण को प्रदूषित करते रहने का कार्य संपादित करते रहते हैं, फिर भीषण गर्मी जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सामना भी तो हमें ही करना पड़ेगा। भाई कृत्रिम दीपक जलाकर उजाले रूपी आनंद लेने के क्रम में भी तो हम ही हैं। अपने वैदिक संस्कृति में तो सायंकाल में ही शयन और उषा काल में ही चारपाई छोड़ देने का विधान है। आगे लिखते हैं कि हम अपने ही हितपोषक स्वस्थ प्रकृति को अस्वस्थ करते रहने के ही प्रयासों में ही हैं। ऐसे में स्वयं की अज्ञानता से जनित ग्लोबल वार्मिंग के दंश को झेलते रहने में गुरेज कैसा। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात के साथ साथ वो शब्द भी लिखे हैं जिनसे गाने हो सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की तरह तो सब चमकना चाहते हैं पर उसकी तरह जलना किसी के बस की बात नहीं। सुबह सुबह निकलता सूरज किरणों को फैलाता है, जब किरणें धरती पर पड़ती सारा जग खिल जाता है, चिड़िया चहकती कलियां महकती फूल भी खिल जाता है, आसमान पे नीला बादल अपना रंग दिखाता है। तो चलिए जरा ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। और हाँ, ये बताइए कि क्या लालटेन जलाई है आपने कभी।

बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम सही जवाब आया। हमराज फिल्म का ये गाना सुनील दत्त साहब का नाम भी लिखा है हमारे कुछ साथियों ने। महेंद्र कपूर की आवाज़, साहिर के बोल, रवि का संगीत। और बात कर रहे हैं हमारे साथी कांच से निर्मित लैंप, जिस पर कांच का ही कवर होता था फ्लेम को हवा से बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त पेट्रोमैक्स लैंप भी चलते थे बचपन में हमारे घर में। एक और श्रोता ने कहा है, जब बिजली नहीं थी तब अंधेरी रात में लालटेन काम आता था। मैंने छुट्टियों में दूर गांव ननिहाल में लालटेन के उजाले में दिन गुजारे हैं। इसके अलावा पड़ती, समई, चिमड़ी, दिवटी, पलिता, मशाल, दीपमाल, मोमबत्ती, ये भी साधन प्रकाश देते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता बता रही हैं कि लालटेन और केरोसिन के पहले महुआ के फल से तेल निकालकर घरों में उसी को जलाया जाता था। और याद किया है एक श्रोता ने उस जमाने को, जब कोई शादी या ऐसे कोई प्रसंग होते थे तो पेट्रोमैक्स चलाकर रोशनी की जाती थी। शीशे वाले लैम्प की याद दिलाई है हमारे एक श्रोता ने। और एक और श्रोता बता रही हैं कि जी जलाई है और उसका शीशा भी साफ किया है। इन्होंने लालटेन की बात कही है। और कितने शीशे तोड़े और डांट खाई पापा की, फिल्म हमराज का नाम भी इन्होंने पहचान लिया। एक और श्रोता ने कहा है कि गांव में पोस्टिंग के दौरान नियमित शाम को बिजली कटौती होती थी, तब हम लालटेन ही चलाते थे। शाम होते ही उसे साफ करके तैयार कर लेते थे। और हमारे जो कविता लिखने वाले श्रोता हैं, उन्होंने एक लंबी सी कविता लिखी है, बहुत खूबसूरत कविता है, लेकिन उस कविता का थोड़ा सा अंश हम पढ़ रहे हैं। जलता रहा वो उम्र भर, मगर किसी ने ये ना पूछा कि जो सबको उजाला देता है उसके हिस्से में आखिर कितनी रातें आती हैं। नीले गगन ने जब कहा तुम अकेले नहीं हो रोशनी के रखवाले, तो सूरज हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान के पीछे सदियों की थकान छुपी थी। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं जलता हूँ तब किसी बच्चे की हंसी में चमक आती है, किसी माँ की दुआ में उजाला रहता है, किसी मुसाफिर को रास्ता मिलता है, किसी उदास चेहरे पर उम्मीद की किरण उतरती है, मगर मेरी किस्मत देख जिसे भी रोशनी मिली वो उसी का हो गया, कोई मेरा ना हुआ। इतना कहकर सूरज चुप हो गया। उसकी तपिश में अब दर्द पिघलने लगा था। आसमान भी खामोश था, क्योंकि पहली बार उसने देखा जो पूरी दुनिया को रोशन करता है उसके भीतर कितना गहरा अंधेरा था। दिल को छू लेने वाला संदेश, बहुत सुंदर। तो अब अगले गीत की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके पहले संदेश भी हैं। श्रोता ने, एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मी ने तो अप्रैल में ही मई जून की याद दिला दी थी, सो अब भी गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। फिल्म जवाब का इन्होंने गीत याद किया है। और बहुत सारे गाने भी इन्होंने बताए हैं, सूरज को लेकर, नीले गगन को लेकर, और बहुत सारी गानों की बात की है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि रोशनी चाहे चांद की हो या सूरज की, दोनों का ही अपना अलग जादू और सुकून है। जहां सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा, गर्मी और नया दिन जीने की प्रेरणा देती है, वहीं चांद की रोशनी हमें शीतलता, सुकून और रात का ठहराव देती है। और सौर ऊर्जा की बात की है हमारे एक और साथी ने। लिखते हैं कि जगत भर की रोशनी के लिए सूरज जलते रहना रहता है, और अब सौर ऊर्जा का जमाना आया है, वो भी सूरज पर ही निर्भर है। अब हम बिजली का चालू रखने के लिए इन्वर्टर चलाते हैं, उसको रिचार्ज मेंटेन करना पड़ता है। चांद और सूरज हमारे रोशनी के नैसर्गिक साधन है। आज हमें अपना सुरीला सफर गीतों से रोशन करके पूरा करना है, और इन्होंने कई गीत याद किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। शब्द है माना जनाब। फिल्म का नाम बताइए और आवाज पहचानिए किनकी है।

0: सही जवाब आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन सभी श्रोताओं का। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज़ है, और हम बता देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। एक श्रोता कह रहे हैं कि सोच लो अगर सूरज दादा ना होते तो पृथ्वी एक बेजान अंधेरी बर्फ का गोला बन जाती, ना पेड़ पौधे होते, ना हम होते, ना पशु पक्षी होते। शुक्र है सूर्य नारायण देव का कि जिनकी कृपा से आज पृथ्वीवासी हर जीव अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एक और श्रोता ने याद किया है, काइन फल निकलता था इसको मशीन में तेल पिराकर और घी के समान उसका तेल निकलता था, उसे भी घर में दिया बत्ती के रूप में जलाया जाता था। एक और श्रोता ने याद किया है हमराज फिल्म के गाने का की बात करते हुए कि मैं बिहार से हूँ और आज के ज़माने में बिहार में ऐसा समय आया जब 15 सालों तक हमारे गांव में 1989 से 2005 तक बिजली नहीं थी, तब लालटेन ही एक सहारा थी हमारे लिए, फिर मैंने सोलर लालटेन खरीदा। क्या बात है। एक साथी ने खुश होकर कहा है कि रोज़ रोज़ ध्यान लगाते हुए आज एक गाना मेरा लिस्ट में आया है, क्या बात है। और एक श्रोता कह रही है कि लालटेन के शीशे को उपले की राख से साफ करना पड़ता था, साफ करते समय बहुत एहतियात बरतना पड़ता था, ज्यादातर घर के बड़े लोग ही इसे शाम को करके रख देते थे। एक और श्रोता ने याद किया है कि दुकान में शाम होते ही लालटेन जलाते थे और कांच को साफ करना पड़ता था, बाती मिट्टी का तेल चिमनी भी बेचते थे, आज ये सब बंद हो गए हैं बिकने। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से दिन निकलता है, चांद की रोशनी से रात का एहसास होता है, ज्ञान की रोशनी से जीवन संवरता है, वैसे ही अच्छे जीवन साथी से जीवन रोशनदान हो जाता है। क्या बात है। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुन लिया जाए।
1: आएगी जरूर,
2: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: सुहाने सुरीले सफर की बात जब हो रही है तो हमारी एक श्रोता ने याद किया है, हमें एक हल्की सी याद है कि गलियों और सड़कों पर लैंप पोस्ट हुआ करते थे, जिसमें एक सरकारी आदमी आता था जो लैंप पोस्ट में तेल भरता था और जला देता था। रात भर लैंप पोस्ट जलता था, सुबह अपने आप बुझ जाता था, तब सूरज की रोशनी से काम चलता था। जी हाँ, वो भी एक जमाना था। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी मम्मी दादी नानी ने लालटेन की रोशनी में कढ़ाई और सिलाई भी की है। हाँ वाकई, और बहुत सुंदर कशीदाकारी की है। अब सवाल जरा गौर से सुनिएगा, गाना पहचानना है आपको और फिल्म का नाम बताना है। कुछ इस तरह की लाइनें हैं कि चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। तो पहचानिए कौन सा गाना है ये और किस फिल्म का है। और हम जब संदेशों की बात करते हैं तो एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश दिख रहा है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों और शांति मन से है, जो अकेलेपन या बड़ी मुश्किलों के बावजूद मन को सुकून देती हैं। अकेले होने पर भी क्या छोटी सी बात से माँ को मन को सुकून दे जाते हैं। विशाल रोशनी की गर्मी में भी एक छोटी सी छांव मिल जाए तो वो मन को सुकून देती है। नीले गगन की विशालता में जब कोई एक चिड़िया चहकती है तो ये अकेलापन दूर कर देती है। जीवन की यही बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच किसी अपने का एक छोटा सा प्यार भरा शब्द या एक मुस्कान मन को शीतलता और राहत प्रदान करती हैं। यही जीवन है कि विपत्ति में भी छोटी छोटी सकारात्मक बातों को ढूंढ लिया जाए, जग ही नहीं मन भी रोशन हो जाए। क्या बात है। और अब अगला गाना जरा सुनिए और बताइए ये आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं। हंसने की बात है।

पारस मणि फिल्म का ये गीत आपने बताया और हमारे एक श्रोता ने कहा कि अगला गीत बचेगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा और वो बच गया, क्या बात है। और जो हमने पहेली पूछी है, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि गीत तो कुछ कुछ याद आ रहा है मगर शब्द नहीं आ रहे। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहेली के इंद्रजाल ने उलझा दिया। ओहो, उलझिए मत, हम सुलझाए देते हैं। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। एक संदेश है, सूर्यदेव की महिमा निराली है, जब से धरती अस्तित्व में आई है सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है। दिन और रात होते हैं, वनस्पति को जीवन मिलता है, हमारे यहाँ प्रतिदिन सूर्यदेव को पूजा जाता है। सूरज और रोशनी की बातचीत की कल्पना अद्भुत है। एक और श्रोता ने कहा है कि जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब साल 1960 से मैं विविध भारती के शरण में आया। मेरे आकाशवाणी राम। बहुत सुंदर। जैसे जगत भर की रोशनी के लिए सूरज को जलते रहना जरूरी है, उसी तरह जगत भर के श्रोताओं के मनोरंजन के लिए विविध भारती का चलना जरूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो गीत की लाइनें एक बार फिर से बता देते हैं। गाना है अंतरे की लाइनें हैं, चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। बताइए कि ये कौन सा गाना है और किस फिल्म का है। और अब ये अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये देखिए आपके लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और फिल्म का नाम बताना है आपको। जहां शब्द से ये गाना,

0: को पाता है जहाँ जहाँ ख्याल जाता है वहाँ वहाँ तुम्हें को पाता है।
1: ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ मुझे, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ?
2: तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उस पहेली की जो हमने गाने के रूप में पूछी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई, पहले उसी का जवाब। आपने अभी जो पहेली पूछी, गाने के शब्द याद नहीं आ रहे, पर ऐसा लग रहा है कि फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ का गाना है, बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ इंसाफ कहाँ है, कुछ इस तरह की इन्होंने बात कही है। बिल्कुल सही बात है, अजब है मालिक तेरा जहां, चिराग कहां रोशनी कहां, ये है गाने की पहली लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। पारसमणि फिल्म के गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सही जवाब आया पारसमणि फिल्म की का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत रचना असद भोपाली की।

गीता रॉय और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने जो गाना सुना उसको सुनकर हमारे कुछ श्रोताओं को लगा कि हमने पहली बार सुना है ये गाना। ये गाना बड़े सरकार फिल्म का है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ तुरंत अपना संदेश भेजने के लिए। और अब अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच होता है या नहीं बताइए हमें, गाना मंजिल शब्द पर।

गजब कमाल, बड़ा ही दिलचस्प। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंजिल शब्द पर फिल्म संजोग से ये गाना आपकी लिस्ट से मिल गया, मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। एक श्रोता ने बताया है प्रदीप कुमार और अनीता गुहा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, और एक और श्रोता कह रहे हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। एक साथी ने याद किया है, जहां तक मुझे याद है पुराने जमाने में शादी की बारात में लालटेन गैस बत्ती से उजाला किया जाता था और बारात ले जाई जाती थी, और गांव की पंचायत में भी गैस बत्ती का उपयोग किया जाता था। इसको पंच बत्ती कहा जाता था। इस दृश्य को राज कपूर की एक फिल्म में भी दिखाया गया था। कौन सी फिल्म थी वो, याद है आपको? शोले फिल्म में जया भादुड़ी को लालटेन जलाते और उसको धीमा करते हुए याद किया है एक श्रोता ने, और अंदाजा लगा रहे हैं एक और साथी कि ये जिंदगी के साथ ये अगला गाना बच सकता है। तो देखिए भाई कि ये गाना आपकी बात आपके लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं। हमें ये भी बताइए कि किसी की छोटी सी बात ने आपका जीवन क्या कभी बदला, या आपकी किसी छोटी सी बात ने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई और आपको याद रह गया।

सही जवाब आया, बहुत बहुत शुक्रिया। रंगोली फिल्म गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, स्वर और अभिनय किशोर कुमार। क्या बात है, पूरा जवाब। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने लगते हैं। श्रोता जो विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़कर मिले हैं, हर रोज मिल रहे हैं। और एक और श्रोता ने कहा कि ये गीत मेरे लिस्ट में था। एक श्रोता ने अंधेरे की बात की है और अंधेरे को विसंगतियों और असमानता का प्रतीक बताया है। रोशनी के लिए सूरज एकमात्र पर्याय नहीं, भौतिकवादी संसार के संदर्भ में या फिर मनुष्य के अंतर मन में गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, सच्ची भक्ति और आंतरिक प्रेम ही एक दिव्य रोशनी है जो अंतर मन में व्याप्त अंधेरे को दूर कर मार्ग प्रशस्त करती है। सृजन और कला के माध्यम से भी रोशनी प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए कि सृजन और कला या आपकी किसी छोटी सी बात से किसके जीवन में रोशनी आई या किसी ने आपके जीवन में इस तरह से रोशनी भर दी, एक पल के लिए लगा जैसे उजाला ही उजाला हो गया। याद हो तो बताएं और अब ये गाना सुनिए और हमें ये बताएं कि फिल्म में फिल्म का नाम क्या है और प्रमुख कलाकार कौन है।

हमारी जो बात थी कि क्या किसी ने आपके चेहरे पर मुस्कान सजाई या आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई है, छोटी सी रोशनी अदा की है उसे, इसके जवाब में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मैंने अपने सहयोगी को कार्यक्षेत्र में कहा था, तुम टूर पे जाते हो, क्या करते, कोई नहीं देखता, सिर्फ दो व्यक्ति तुम्हारा काम देखते हैं, एक ऊपर वाला, एक स्वयं तुम, अतः खुद से पूछो। उसे बात लग गई और वो सुधर गया। क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से कई बातों का समाधान हो जाता है, कई बार बात बिगड़ भी जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बनेगी या बिगड़ेगी ये तो बिल्कुल दूसरे के कई बार मूड पर भी डिपेंड करता है। और ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या वो गाना, क्या वो बात दूसरे को भली लगने वाली है या नहीं। एक श्रोता ने किशोर दा कहा है कि किशोर दा ने ये गाना एकदम हेमंत कुमार जी के अंदाज में गाया है, कभी कभी तो धोखा भी हो जाता है कि किसकी आवाज है, छोटी सी दुनिया की बात कर रही हैं ये। हाँ भाई, छोटी सी दुनिया है, आवाजें भी मिल जाती हैं, अंदाज भी मिल जाते हैं। और एक और श्रोता ने गुस्सा जताया है कि 60 और 70 के दशक के गानों में ही सिमट कर रह गया है कार्यक्रम। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम और गाने भी शामिल करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात हो रही थी, जिस तरह के विषयों की बात हो रही थी, जिस तरह के शब्दों की बात हो रही थी, तो जो गाने अच्छे लगे और जो गाने हिट रहे, ज्यादा सुने गए, उन्हें ही हमने छांटा है। तीसरी कसम फिल्म और हरियाली और रास्ता में लालटेन दिखाई गई है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात हो रही थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे की, लेकिन उसके पहले हम सोचते हैं कि ये गाना जल्दी से सुन लिया जाए। हम आपको बताते हैं इसका जवाब भी। ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम पहचानिए, आवाजें पहचानिए किनकी है।

कई संदेश आए हैं लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाजों में बड़ी बहन फिल्म का ये गाना आपने सुना था, सही जवाब। एक श्रोता ने कहा है कि हमें एक बूढ़े माली की मुस्कान याद आ गई। हमारे घर के सामने छोटा सा पार्क बना हुआ है पानी की टंकी के चारों तरफ, और उसमें इतनी गर्मी में रोज एक बूढ़ा माली छतरी लगा करके घास काटते हैं। हम एक गिलास नींबू पानी देने गए तो इतनी गर्मी में मानो उन्हें तड़क मिल गई। उनकी मुस्कान से हमें जो खुशी मिली नहीं बता सकते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता ने बताया है किशोर कुमार और कुमकुम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के प्रमुख कलाकार। और एक और श्रोता ने कहा है कि पत्नी धर्मपत्नी के आगमन से 1975 में मेरी किस्मत बदल गई। उसके पहले शून्य में था, वो आई तो आगे एक लग गया यानी 10 बन गया। ये पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई ना? बिल्कुल आ गई। और मुस्कान के साथ साथ वक्त की ये घंटी भी आ गई कि अब आपसे इजाज़त देनी है। तो सुरीला सफ़र कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम, फिर मिलेंगे। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

शंकर जयकिशन के संगीत से सजा गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। और अब पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। गीत संगीत एक बार फिर हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन का। फिल्म है आरज़ू।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म आरजू के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत भी करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करनी होंगी।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
1: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए है। प्रदेश के कटनी जिला चिकित्सालय सहित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मरीजों के निःशुल्क डेंगू और मलेरिया की जांच की जा रही है। जबलपुर में आज न्यायपालिका से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीश शामिल हो रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन टू फ्यूजनरी एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन विषय पर आधारित इस सेमिनार में न्यायपालिका में टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंटीग्रेशन को लेकर चर्चा की जा रही है। धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग समितियों के पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल ऐतिहासिक फैसले में भोजशाला को राजा भोज के समय का वाग्देवी का मंदिर माना और हिंदू पक्ष को यहाँ पूजा का अधिकार दे दिया है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है, जहां शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस महासंयोग के मौके पर शनि मंदिरों और पवित्र नदी घाटों पर तड़के से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आगरमालवा जिले में शनि जयंती पर शनि मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। सतना जिले के चित्रकूट में श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा लगा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के 37 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, उज्जैन और मंडला में रात में भी तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, धार और देवास सहित कई जिलों में तेज लू चलने की संभावना जताई गई है। विश्व कप T20 से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने शनिवार सुबह उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर सहित अन्य खिलाड़ियों ने भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी सर्किल जेल के मुलाकाती क्षेत्र में लीगल एंड हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया, जिसमें बंदियों और परिजनों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी गंभीर अनुवांशिक रक्त विकारों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आज रायसेन में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। CBSE ने कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
0: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक ओडिसी भरतनाट्यम कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थी साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, AI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
6: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से दो दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्युनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अरियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
8: आपसे कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, AI और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। CBSE ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गाना मन्ना डे के स्वर में आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला कालजयी गीत स्कूल मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं, प्रदीप के बोल हैं और वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की रेशमी आवाज़ों में प्यार बरसाता ये कालजयी गीत आपने सुना स्कूल मास्टर फिल्म से। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाई भाई फिल्म से है, लता मंगेशकर की आवाज़ है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की तर्ज़।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जिद्दी का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, सुरों में पिरोया है सचिन देव परमन ने।

बोलो कुछ तो बोलो बोलो बोलो हे बोलो।

मैं दिल हथेली पे लेके आ रहा हूँ। ऐ हसीनो बाबा बदाशु पेत, बाबा बदाशु पेत, बाबा बदाशु पेत।

0: कब से नगमे मोहब्बत के गा रहा हूँ।
1: चाचा जिंदाबाद, इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का गाना। शैलेंद्र के बोलों को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

ये महकती किलकती शिकायत आरजू फिल्म से हसरत जयपुरी की लिखे हुए इस गीत में आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी नगमा बंदिनी फिल्म की से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत रचा है सचिन देव बर्मन ने।

0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आज बस यहीं तक। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहे गीत,
2: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आपके मनचाहे गीतों के साथ हाजिर हूं मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म दाग के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनांद गांव से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दाग का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है। सुनना चाहते हैं? रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

फासलों की खुशबुओं में महकती नज़दीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना, और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में।

मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, इस गाने को सुनना चाहते हैं। जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

ये थिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवरलाल फिल्म से सुना और अब अगला मनचाहा गीत बड़ी प्यारी सी पसंद चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोक झोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

0: दिल के सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: चाहेगी
2: मन चाहेगी यह है विविध भारती। नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: इस हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज, ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज।
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को।
2: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन,
1: इस पर दया कीजिए।
0: अरे, ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
4: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
3: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है। लीजिए, मैंने अपना बाण लौटा लिया।
4: पुरुवंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
3: ईश्वर करे

0: आपको अपनी ही तरह गुणवान प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
0: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन। मेरा नाम शारंग्रव है।
2: और मैं हूँ शारद्वत।
1: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
0: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
2: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहाँ पधार कर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
1: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
0: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
1: फिर?
2: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
0: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
1: शकुंतला?
2: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
1: कुलपति कब लौटेंगे?
0: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है।
2: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
0: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी समिधा लेकर उपस्थित होते हैं।
1: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
2: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों भड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं। क्या रूप, क्या सौंदर्य है! आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं, और लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
2: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
3: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
4: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
2: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे, समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
4: लताएं भी रूठती हैं क्या?
2: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूठती भी है और प्रसन्न भी होती है, समझी?
3: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
2: क्या समझी है तू?
3: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
2: वो कैसे?
3: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से?
2: अरे अनुसुईया, ओह, जरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांध दी है इस प्रियंवदा ने।
3: ए, मुझे क्यों दोष दे रही है?
2: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
3: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
2: धत।
0: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
2: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूं?
3: तेरे मुंह से तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
2: परिहास ना कर।
3: अच्छा नहीं करती, बता।
2: देख, वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी बड़ी हो गई, नहीं?
3: तेरी तरह।
2: फिर परिहास।
3: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
2: हाँ बता।
3: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
2: धत, तेरा तो सिर घूम गया है।
3: सच? मैंने अपने कानों से सुना है।
2: अच्छा,
3: पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
4: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
2: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
5: ओह, अरे ये भौरा कहां से आ गया?
2: अरे
5: ओ, अरे भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। ओ, अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग, अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
3: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
4: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
3: हाँ, वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
5: अरे बचाओ, बचाओ ना।
0: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए।
6: पृथ्वी पर पुरुवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
3: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
4: आपके आते ही भाग भी गया।
3: आप खड़े क्यों हैं आर्य? विराजी ना,
4: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
6: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
3: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य,
4: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
6: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठिए ना आप लोग भी।
5: ना तुम लोग बैठो, मैं भी। अब बैठ भी जा। इन्हें देखते ही मेरे मन में

0: जहां होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
1: और ही ढंग से।
2: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते, क्यों शकुंतला?
3: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
1: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूं?
0: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला। करती
2: बहुत मीठा है इसका गला,
0: रहती है सबका भला,
2: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
0: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है।
2: कुलपति कणु की सबसे लाडली बिटिया है।
1: किंतु कुलपति कणु तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
0: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य। वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
1: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
2: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डूलता हुआ दिखाई देने लगा।
1: फिर?
2: फिर क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया मेनका के उस मादक रूप को देखकर।
1: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य।
0: किंतु क्या आर्य?
1: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
0: ये तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य। पिता कण्व तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
3: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
0: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
2: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
1: वृक्षों को सींचने का ऋण?
0: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
2: इसके शेष दो वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
1: ठीक है, मैं चुका देता हूं इनका ऋण।
0: आप
1: ये लीजिए।
0: अंगूठी? किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
2: आपके पास ये अंगूठी?
1: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
0: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
2: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
1: मैं आभारी हूं।
4: रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं। सावधान सावधान।
1: ओह, लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आए हैं।
2: हे भगवान, अब क्या होगा?
4: सावधान, वन के जीव जंतुओं के कान के रूप में एक उच्छृंखल हाथी भी उत्पात मचाता आ रहा है। सावधान
0: चलो चलो चलो, उस हाथी के यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
2: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
1: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
2: चलो शकुंतला।
3: चलो
1: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं। किंतु किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा? शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यही स्थिर होकर रह गया है। चलो तन से ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो। प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो। भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना। गधा, घोड़ा, बैल, मक्खी, मच्छर, कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है। शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है। अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,

0: नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह क्या भंगिमा है, आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे, अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा।
0: हे भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज।
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: हैं? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
0: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
0: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेष क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
0: विशेष बात?
1: हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
0: अप्सरा की कोख से और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव्य।
2: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
4: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन।
4: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहाँ नहीं है।
5: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आर्य।
4: अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
1: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक।
2: आज्ञा महाराज।
1: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहाँ ले आए।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूं।
4: आर्य की जय हो।
2: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
1: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
2: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
1: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: माता का संदेश?
6: महाराज की जय हो।
1: क्या आदेश है माता का?
6: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
1: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव्य।
4: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
1: एक काम हो सकता है माधव्य।
0: मैं यहाँ राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
1: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
0: मैं तुम्हारे स्थान पर?
1: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
0: ठीक है महाराज, दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुखी सुख है।
1: और हाँ, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ, यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
0: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
1: एक बात का ध्यान अवश्य रखेगा युवराज।
0: कहिए महाराज।
1: यही कि मैं यहाँ तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूँ, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
0: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा।
1: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
0: जो आज्ञा महाराज।
1: जाओ युवराज।

0: कितनी प्यारी पवन चल रही है, अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या कह रही हो अनसुया?
2: प्रियंवदा, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से
2: तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवदा, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
0: इसी से पूछकर देखें?
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो। इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
1: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं, तभी से
2: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
1: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
0: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
2: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
1: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
0: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
2: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
0: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
2: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
0: वो कैसे?
2: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
0: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
2: ए, मुझे एक उपाय सूझा है।
0: क्या?
2: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं।
0: फिर
2: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
0: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
2: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
1: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
0: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
1: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
0: क्या शकुंतला?
1: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
0: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
2: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
1: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाई पाडाला पिकलाय आंबा, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा।
0: और ये हिंदी गाना।
1: ओ, ओ, ओ, ओ पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार मेरे सब विविध भारतीय सुनने वालों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
2: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
3: जरूर,
2: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशन आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
3: अन्ना जी के सिवा और वसंत देसाई के सिवा।
2: अच्छा,
3: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं। अच्छा, गाया
2: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
3: अन्ना जी के गानों का शो करता भुलाए ना बने करके,
2: जी जी,
3: उनका नाम था। तो हम शो करते षणमुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रेवलिंग। तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के, यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया। तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ, तो आपके घर में नहीं आई, तो वसंत जी मतलब ठीक है आपको ऐसा आता है ना, ऐसे गाओ चलेगा। अन्ना जी नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
2: अन्ना जी मतलब
3: श्री रामचंद्र जी। तो षणमुखानंद में शो था और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पे करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे।
2: अच्छा।
3: तो थोड़ी देर एनर्जाइजेशन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
2: अच्छा।
3: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दिया, फिर वो लोग चुप बैठ गए।
2: अच्छा।
3: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है, नाम नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
2: जी, जी,
3: वो पूरा रिकॉर्ड भी, रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एचएमवी में।
2: अच्छा।
3: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
2: Okay.
3: एक समय काली पास सुर है तो खर्च के जो सुर होते हैं, आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब, तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, तू घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना। तो वो किसी के भी सुन, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
2: जी,
3: दोनों में फर्क था, वसंत जी और अन्ना जी।
2: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है,
3: बहुत,
2: उसमें
3: बहुत।
2: से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों से
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये हाँ, तो समझ में आता है।
1: हाँ,
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है
1: नहीं,
0: या
1: नहीं,
0: लता
1: वो तो
0: ऐसा
1: नहीं,
0: कभी हुआ नहीं?
1: वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ। लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए। हाँ,
0: अरे वाह, ये कौन
1: मराठी
0: सी फिल्म?
1: फिल्म, वसंत जी का म्यूजिक था
0: जी,
1: और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी।
0: अच्छा,
1: तो उनकी दोनों की जुगलबंदी, वो दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा,
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: ट्रैक
1: तो मैं बहुत दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थी, उनका एसएल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ।
0: हाँ,
1: हमारा तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया।
0: अच्छा,
1: लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से।
0: अच्छा,
1: तो उन्होंने मुझे ये कहा था, जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का, और कुछ करने का नहीं। बोला अच्छा, वो आप किस हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड। वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था
0: अच्छा,
1: उनका।
0: आशा जी की बात निकली है, तो वो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफ कोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर तरह का गाना उनको। वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना
0: प्राण
1: दिया।
0: जाए पर वचन जाए,
1: हाँ, प्राण
0: वो
1: जाए,
0: नैयर साहब का
1: नैयर
0: कंपोजिशन।
1: साहब का।
0: क्या बात, क्या बात।
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना चुनना तो नाइंसाफी होगी।
0: हाँ,
1: लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत
0: ये गाना सुन लिया जाए।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए, और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अम्बा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ पुराना कोई फिल्म का, और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ.
1: तो लोग एकदम ऐसे अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा,
1: अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे, हाँ. और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
0: जी, बिल्कुल,
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उस मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका,
0: अच्छा,
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था,
0: हाँ,
1: मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला अम्बा, वो गाई है, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं वो मेरी है, तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से
0: जी, जी, जी.
1: कोई कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहाँ के लोकल लोग बहुत खुश होते थे, उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना,
0: हाँ,
1: तो मस्त उनको मजा आता था सुनने में। उसका एक मंसूर का किस्सा है, मैं आपको बताया कि
0: बिल्कुल,
1: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था मेरे पीछे, बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रिका फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता था,
0: कटआउट बनाया
1: था, कटआउट बनाया था, तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, था पत्रे का बनाया था मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दातार और सुनहरी यादें, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था, तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है,
0: हाँ,
1: मंसूर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड उसको हम साइक्लोरामा डालते थे,
0: अच्छा,
1: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
0: घूम रहा है,
1: ऐसा लगता
0: अच्छा,
1: था,
0: अच्छा,
1: तो ऐसा भास होता था लोगों को, तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको लोगों को ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ,
0: हाँ,
1: मेरी मेरी तो जहाँ तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आप अच्छा गाने की, तो बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ
0: अच्छा
1: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था,
0: हाँ,
1: कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा
0: क्या बात, क्या
1: लेकिन
0: बात?
1: मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने, हाँ, ऐसा गाना गा, फिर वो शांत हो गया आदमी।
0: श्रोताओं की बात निकली है
1: जी,
0: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में शोज किए हैं और विदेशों में भी किए हैं,
1: जी,
0: हर शहर का श्रोता अलग होता है,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं लेकिन अनुभव से आपको मालूम होना चाहिए कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं, एक साथ लगो पाठ पांच छह शांत धीमे गीत, फिर लोग हा करके सामने सामने ये करते हैं,
0: अच्छा, अच्छा।
1: फिर दो गाने के बाद ये रात को रात सफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप हाँ समझना चाहिए, वो सिखा के नहीं आती बात,
0: अच्छा, अच्छा।
1: और जहाँ तक पहली बार भी गए किसी शहर में किसी गांव में छोटे से गांव में भी
0: जी, जी।
1: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार के गाने चाहिए,
0: अच्छा,
1: तो होने से ज्यादा अच्छा होता है।
0: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है?
1: फर्क नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे,
0: अच्छा,
1: ये है अच्छा लगता, क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं, तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे, पहला प्रमिला भी अच्छा गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके।
0: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
1: रफी साहब का गाना एक दुगाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, हाँ, और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे,
0: जी, जी,
1: तो
0: जी।
1: वो आगे आके उनको उसको एक बोलते ना, मैं बताती हूँ आपको,
0: हाँ,
1: रफी साहब पहले शुरू करते थे
0: जी।

0: फिर जानी इसकी अरे परसो भी रहेगा अरे तरसो भी क्या जॉनी भाई इतना के पूना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते
1: जी जी जी तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर।

0: प्रमिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक,
0: अच्छा,
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और हाँ, स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है,
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी जी
1: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना,
0: हाँ
1: ये होता है,
0: हाँ हाँ
1: ये ठपका दोष आता है उनके ऊपर,
0: जी जी
1: इसलिए वो अगर होता था। लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी,
0: हाँ
1: मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे ये दाद मिलती थी लोगों
0: जी
1: की,
0: जी
1: तो मैं खुश थी, वही वो इसमें ही खुश थी।
0: जी जी जी अब
1: और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ
0: जी
1: से बहुत
0: जी
1: अच्छा चला
0: बिल्कुल
1: और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया
0: हाँ
1: कि ऐसा
0: हाँ
1: होना चाहिए
0: हाँ
1: ऑर्केस्ट्रा।
0: जी जी
1: एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा ये वो डांस वो, ये सब नहीं, अच्छी तरह से भी करो
0: जी
1: तो फिर लोगों को पसंद। तो पूना के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे,
0: हाँ
1: उन्होंने महाराष्ट्र को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो
0: हाँ
1: वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए
0: क्या
1: बहुत
0: बात है,
1: अच्छी
0: क्या
1: है,
0: बात है,
1: दूसरा कोई कहने की
0: हाँ
1: जरूरत ही
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: बिल्कुल। शो
1: है।
0: में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो
1: प्रेजेंटेशन शालीनता हो
0: तो
1: जरूर,
0: सवाल ही नहीं, वो
1: बिल्कुल
0: ऑर्केस्ट्रा
1: बिल्कुल
0: बहुत सुंदर
1: बिल्कुल।
0: होता है, क्या बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग हैं और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी
0: हाँ,
1: ज्यादा नाम मुझे याद नहीं
0: प्राइवेट
1: है।
0: शोज भी होते हैं कई
1: प्राइवेट
0: बार
1: शोज भी होते
0: जी
1: थे,
0: कंपनी के लिए
1: होते
0: या
1: थे
0: किसी,
1: कंपनी के लिए, किसी
0: हाँ हाँ
1: कंपनी के लिए बहुत शो हुए,
0: अच्छा
1: मतलब बहुत सारी टाटा इंडस्ट्रीज बम्बई के आसपास और बाहर गांव में भी
0: जी जी
1: बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे भी,
0: अच्छा
1: नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट
0: जी
1: किया
0: जी जी
1: मुझे।
0: प्रमिला जी, अलग अलग संगीत के गाने आपने मंच किए
1: हाँ
0: हैं,
1: जी
0: सबका अपना अलग अंदाज होता
1: हाँ
0: है,
1: जी
0: अपना है।
1: एकदम
0: ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया, सबका
1: समझ,
0: गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और
1: सही
0: उनकी
1: बात सही बात।
0: विशेषता होती है। फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं, हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी,
1: हाँ जी
0: शमशाद
1: हाँ जी
0: बेगम जी के
1: हाँ
0: प्रस्तुत,
1: जी हाँ
0: वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ,
1: यूँ
0: किन
1: कहूँगी
0: कंपोजिशंस में
1: कि
0: ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
1: हाँ यही मैं कहने वाली थी कि
0: जी जी
1: पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे
0: जी
1: वो चैलेंजिंग थे।
0: अच्छा
1: हाँ अभी
0: अच्छा
1: आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है,
0: अच्छा
1: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन पुराने जो गाने थे
0: हाँ
1: उसमें अगर जो म्यूजिक भी था
0: हाँ
1: बीच का,
0: जी
1: वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा,
0: जी
1: इस
0: जी
1: तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है ये,
0: हाँ समझ में आता
1: ऐसा चिल्लाते थे
0: जी
1: जरा
0: जी
1: भी। मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ,
0: जी
1: मेरा
0: जी
1: अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक हैं,
0: हाँ हाँ
1: उन्होंने शुरुआत करी कि मेरे शो से की थी,
0: अच्छा
1: तो वो सेमी क्लासिकल रफ़ी साहब कैसे मधुबन में राधे का नाचेरे गाना,
0: जी जी
1: तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और सुखमय सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
0: अच्छा
1: हाँ तो नंदूरवार करके गांव है छोटा
0: जी
1: सा धुलिया के पास,
0: जी
1: तो वहाँ पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते एक आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ ये अच्छा हुआ ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया।
0: हाँ
1: मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको
0: हाँ
1: क्लासिकल का ज्ञान था,
0: हाँ
1: तो नहीं वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया,
0: ओ
1: वो तो रफ़ी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर
0: हाँ
1: खान साहब की गाई हुई है वो तो, लेकिन रफ़ी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था,
0: हाँ
1: लेकिन वो कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए हैं
0: जी
1: मुकरी,
0: जी
1: तो उतना भी उसको मालूम पड़ा।
0: बिल्कुल,
1: म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए
0: तो श्रोताओं के
1: भी
0: समझ में आ
1: पुराने जो
0: जाते हैं
1: गाना
0: जी जी
1: बराबर उनको ए
0: बिल्कुल
1: करके चिल्लाते थे वहां से।
0: हाँ,
1: हाँ
0: क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार सुना है, तो उन्हें वैसा का वैसा वो सुनना चाहते हैं।
1: अभी वो गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, टरा टरा टरा, वो आना ही चाहिए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना। इतना म्यूजिक चिपक के चलता था शब्दों को
0: जी। ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं
1: जी,
0: उनकी नजर से एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है,
1: मिलता नहीं है, सही बात।
0: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके अपना उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
1: एक तो रिहर्सल, बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से। इसका मैं अब बदलाव किस तरह से आया है, अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20-25 शो हुआ करते थे, वही। और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए, नहीं तो आज ये ढुलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का। तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था, सालों साल तक
0: जी।
1: अभी मैंने 2023 को एक शो किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू, शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज 4 साल से, तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें। तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीजें नहीं थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी, लेकिन एक काल के हिसाब से तुमसे जो बदली हो जाएगा
0: जी,
1: तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का, उसमें एक रिहर्सल और शो
0: जी,
1: बस दूसरी रिहर्सल नहीं, हाँ एक ही रिहर्सल। वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो बात, जी तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी 2-3 थे म्यूजिशियंस, एक संजय मराठे करके है
0: जी,
1: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
0: जी,
1: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड उसका खुद का ग्रुप है, तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ, मुझे शो करना है।
0: अच्छा।
1: तो ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता जाता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना रिहर्सल, तो एक रिहर्सल और शो
0: जी,
1: लेकिन
0: जी।
1: फिर भी लोगों ने पसंद किया इसको, शो जी, को
0: जी। आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
1: विनय मानके बोलूंगी, विनय मानके,
0: विनय मानके जी जी। मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत से विज्ञापनों में विनय मानके जी की आवाज हम सुनते हैं
1: जी, जी।
0: तो
1: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे, बहुत सारे जिंगल गाए उसने, और स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज परफॉर्म होता है वो था, बहुत सारे हल्के फुल्के बातें भी करने का बीच में
0: अच्छा।
1: मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे
0: जी,
1: नॉट डेट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के, तो ये कुछ कुछ कुछ कुछ बीच में अशोक जी इतने एक अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा, फिर मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा आया
0: बहुत अच्छे।
1: फिर एक गाना था अन्ना जी का, भोली सूरत दिल के खोटे, नए जमाने की नारी, नए जमाने की नारी, फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली बोला ऐसा, हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली, कुछ भी मतलब वो ठीक था, लोगों को भी मजा आता,
0: मस्ती के मूड में
1: मस्ती के
0: हमेशा रहते थे।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे,
1: जी, जी.
0: लेकिन विनय जो अकेला संभालता शो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना था उसका. बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब
1: जी,
0: था,
1: जी.
0: अच्छा गाता.
1: प्रमिला जी, अब गान सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं. कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर
1: जी,
0: साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा है, सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए हैं, पड़वा के शो में,
1: ओहो
0: वसंतदा पाटिल, शंकर राव चौहान, और जो कुछ
1: जी
0: विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए. वो बड़ा शो हुआ करता था, और तो मैं किसी को बुलाती थी,
1: जी
0: या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी, प्रभु
1: हाँ
0: कुंज में, तो उसी सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली.
1: बिल्कुल.
0: सामने दर्शन हुआ साक्षात. तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके आपने कैसे आना किया, कशा कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये. तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी
1: हाँ
0: गुढीपाडव्याला,
1: अच्छा
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन वो भारगाव जाने वाली थी,
1: अच्छा
0: नहीं आई.
1: अच्छा
0: फिर मुझे उन्होंने पूछते कि कसं भाऊ तुम्ही असे प्रोग्राम करता, एवढे प्रवास करायचा, परत गायला उभं राहायचं,
1: ओहो
0: कसं करता? म्हटलं नाही अभी आदत हो गई है,
1: हाँ हाँ
0: हो
1: हाँ
0: जाता है. मतलब उसने उसके पास वो नोन थी कि
1: हाँ
0: हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं,
1: हाँ
0: पूरा मालूम थी
1: मालूम था उनको, क्या
0: उनको.
1: बात. अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता
0: जी
1: जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने
0: जी
1: अलग अलग गाने उनके
0: हाँ
1: गाए
0: जी हाँ
1: हैं,
0: जी
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगी?
0: उनका भी एक सजा फिल्म का गीत है,
1: हाँ
0: तो वो मैं शायद

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियाँ आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी है, पाड़ा ला पिकला
1: अंबा,
0: आंबा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में शामिल
1: होती
0: होना बहुत
1: शामिल होना
0: जरूरी होता
1: बहुत ही
0: था?
1: जरूरी था, मस्ट।
0: हाँ,
1: और
0: तो
1: भी
0: एक तो पहले हम उसकी एक झलक सुनेंगे
1: सेकंड, जरूर
0: और
1: जरूर
0: फिर लावणी की भी बात करेंगे।

0: हुआ
1: कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी पर फिर ये गाना तो वंस मोर होता ही था
0: जी जी
1: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी हाँ। कि बहुत थक गई हूँ हाँ। तो पाड़ा पिला मैं बोलूंगी अम्बा आप बोलेंगे
0: अच्छा।
1: तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर अरे क्या कर रहे हो आप अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से फिर जोर से एकदम जो जोर लगा के अम्बा आता था सामने से मजा आता था उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया
0: वाह वाह वाह
1: उनको भी कुछ शायद
0: जी। प्रमिला जी आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहां का कोई गाना आप उन्हें जरूर
1: हाँ
0: सुनाया करती
1: थी हाँ।
0: और अपनी लिस्ट में
1: कनाडा गाना सुनाती हूँ
0: जी जी जरूर
1: मेरी लड़की बैठे ना मतलब खुश हो जाएंगे।

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि भाई क्या,
1: अरे बाप रे, गुजराती तो वो एक गाना था।
0: हाँ हाँ

0: ये गाना बहुत दरे था। और उधर गुजरात के एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे। हाँ। तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहां जब सब काठियावाड़ी ने वो झिबला पहनते हैं, हाँ, हाँ, शॉर्ट हाँ, हाँ। वो पहन वाला बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाँव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाँव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए, ए प्रेमिला बेन नवो पिक्चर ना गाने गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने
1: जी।
0: उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर,
1: ओ।
0: इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उसमें। तो
1: जी।
0: ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ
1: जी
0: बोलना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। 1975 में जो शुरुआत हुई, उस वक्त पहली
0: जी
1: बार आपने जो गानों की फेहरिस्त बनाई
0: हाँ
1: होगी,
0: जी
1: लिस्ट
0: हाँ
1: बनाई
0: जी हाँ
1: होगी,
0: जी
1: है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: तब की जो उस प्रोग्राम, उस शो की जो लिस्ट थी।
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें जो
1: अच्छा
0: लोग पसंद करते थे,
1: अच्छा
0: हमारे लिए नहीं,
1: हाँ
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे
1: हाँ
0: इधर
1: हाँ
0: उधर,
1: हाँ
0: लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरे पसंद के या लोगों की

0: पसंद के
1: हाँ
0: पहले से थे,
1: अच्छा
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों
1: हाँ
0: के लिए,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन एक एक अवरी जो मैंने बोली,
1: जी
0: निगाहें मिलाने को जी
1: जी
0: चाहता है, पे पाड़ा ला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की,
1: हाँ
0: वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी।
1: अच्छा
0: उनके गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं, वो ही गाने चाहिए लोगों
1: वाह वाह
0: को।
1: वाह,
0: बहुत मजा आता था।
1: बहुत मज़ा आ रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन
0: हाँ जी
1: करके।
0: हाँ जी
1: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए, तो वो कौन सा
0: ओहो,
1: गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, ऊपर वाले का ये करम है कि आज आप यहाँ पधारी,
1: मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे, और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिस तरह आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: पर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी है इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। यह उस रात की बात है जब शोख हवा एक खूबसूरत फूल के पास ठिठक गई। अब हवा के मन की लहर का क्या कहें। कुछ देर ठहरी, अपने झोंकों में फूल की खुशबू समेट आगे चल दी, लेकिन फूल के ठहरे मन में तो हलचल मचा गई।

इटलाती बलखाती हवा चलते चलते एक जर्रे के पास आई जो खुद में सिमटा न जाने किन ख्यालों में गुम था। हवा ने उसे शरारत से देखा और अपने एक झोंके की गांठ खोल दी। फिर क्या था, फूल की खुशबू ने जर्रे को चारों ओर से घेर लिया।

क्या बताएं, वो हवा की छेड़छाड़ थी या खुशबू का असर? खोया खोया वो जर्रा अचानक बेचैन हो गया और पूछने लगा।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं छाया गीत। कुछ एहसास इतने खास होते हैं कि साथ ना होकर भी हमेशा पास रहते हैं। खुशबू के उस झोंके से जरा तो महक गया, जो कहना चाहता था वो हवा से कहलाया, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरा।

फूल को संदेश मिला जर्रे का, उसका रंग कुछ और निखर गया, मगर चाहकर भी न मिल पाने की बंदिश थी सामने। फूल को बेहद मायूसी हुई, मुरझाने का वक्त करीब था। फूल ने अपनी तमाम खुशबू हवा को सौंपी और जर्रे को संदेश भिजवा दिया।

जर्रा झूम उठा जब जानी पहचानी प्यारी सी खुशबू ने उसे एक बार फिर घेर लिया। मगर जब हवा ने फूल का पैगाम सुनाया तो एक आग सी उठी जर्रे के सीने में। अपनी बेकसी पर वो तड़प उठा, काश वो भी फूल के इर्द गिर्द होता, कुछ पल तो साथ होते, वो कितना अच्छा होता अगर यूं होता।

एफएम बैंड 102 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। शाम के 5:30 हुए हैं, श्रोताओं अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। शाम के 6 बजने वाले हैं। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम लोक संगीत का।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब वक्त है श्रोताओं कार्यक्रम संध्या वंदन का। संध्या वंदन का

संध्या वंदन कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। शाम के 7 बजने वाले हैं। अब वक्त है हिंदी में समाचारों को सुनने का, आकाशवाणी दिल्ली से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास गणना प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने का विकल्प भी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की भी समीक्षा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार संचालित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में अनुसंधान विकास, नवाचार, RDI निधि योजना के तहत 5 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। IPL क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। श्रोताओं, अब वक्त है कुछ संदेशों का।
3: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है। जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है। जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर

0: कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून दिल की आरती
2: सुरीली संदली।
7: GST काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर GST की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% GST लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। GST परिषद ने छोटी कारों 350cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा।
8: FM बैंड 102 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र। शाम के 7:10 होने वाले हैं। अब वक्त है प्रादेशिक समाचारों का आकाशवाणी भोपाल से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत की न्यायपालिका को 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाना होगा, कहा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड के हैग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और

0: अब आज की एनर्जी क्राइसिस है, ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा सिर्फ भारत में हो रहे हैं।
0: आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजेक्शन में आधे से ज्यादा केवल भारत में हो रहे हैं। और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है।
1: उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका को अब अस्पतालों की तरह 24 घंटे काम करने वाली व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। डिजिटल बदलावों के इस दौर में आम नागरिकों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। आज जबलपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने कहा कि तकनीकी प्लेटफॉर्म ऐसे हों जिन्हें ग्रामीण और तकनीक से कम परिचित लोग भी आसानी से समझ सकें। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री बेगवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की यह पहल साधारण नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले डिजिटल पुलिस नेटवर्क के उदाहरण के रूप में चंडीगढ़ का नाम लिया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश मिसाल बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विज्ञान और तकनीकी ने मानव जीवन को सरल बनाया है और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने में न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: खास करके आज के समय में जब FIR से लेकर के बीच की बहुत सारी कड़ी होती है, फॉरेंसिक लैब से लेकर के कई सारे प्रकार के तंत्र रहते हैं, उन सब के आधार पर हम त्वरित गति से जो जिसकी आवश्यकता उसको लाभ मिले उस तक मदद पहुंचाए। क्योंकि न्याय का मतलब ही है विलंब से छुट्टी, न्याय का मतलब ही है अन्याय से मुक्ति।
1: शिक्षा मंत्रालय ने देश में स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज नीट UG 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका है। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बेहतर निगरानी, व्यापक परीक्षण, बेहतर उपचार सुविधाओं और व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से डेंगू नियंत्रण प्रयासों को मजबूत करना जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि डेंगू बीमारी से बचाव के लिए स्वच्छता, जागरूकता और सतर्कता बहुत जरूरी है। स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। प्रदेश के कटनी जिला चिकित्सालय सहित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शिविरों का आयोजन कर मरीजों की निशुल्क डेंगू और मलेरिया की जांच की गई। धार जिला मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक बोधशाला में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग समितियों के अधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में दर्शन और पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने कल ऐतिहासिक फैसले में भोजशाला को राजा भोज के समय का वाग देवी का मंदिर माना और हिंदू पक्ष को यहां पूजा का अधिकार दे दिया है। धार जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने कहा कि शहर में शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं।
4: शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, आम जनता अपना रूटीन वर्क रेगुलर जो रूटीन वर्क कार्य करे वो कर सके, इस प्रकार का कोई भय ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार शहर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लगभग 1000 का फोर्स हमें उपलब्ध कराया है जिसको विभिन्न फिक्स पैकेट और सेंसिटिव एरियाज में लगाया गया है।
5: सीसीटीवी कैमरे या
4: देखिए जैसे कि सीसीटीवी सर्वेलेंस के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, सोशल मीडिया पर लगातार पुलिस की नज़र बनी हुई है। किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि या कोई भी इस पर पोस्ट करता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
1: राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में आज शनि जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। 13 साल बाद एक विशेष संयोग बना है जहां शनि जयंती, शनिचरी अमावस्या और वट सावित्री व्रत एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इस महासंयोग के मौके पर शनि मंदिरों और पवित्र नदी घाटों पर तड़के से ही लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आगरमालवा जिले में शनि जयंती पर शनि मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के शहडोल, चंबल, रीवा, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू का प्रभाव रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान खंडवा, रतलाम सहित कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। वहीं डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुर्णा जिलों में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के मुख्य अभियंता शैलेंद्र शुक्ला द्वारा सागर जिले के खुरई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया गया। बच्चों में मानसिक क्षमता, स्मरण शक्ति और ब्रेन एक्सेस कौशल हेतु आगरमालवा में 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन हो गया। खंडवा में डोडवाली अमावस्या आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सीहोर के बुधनी सिविल अस्पताल में पोषण टोकरी वितरण कार्यक्रम किया और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। शिवपुरी कलेक्टर ने आज बिछोर में सनघट्टा सिंचाई परियोजना अंतर्गत सनघट्टा डैम का निरीक्षण किया। नीमच जिले में आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर जमुनिया कला के औषधालय परिसर में योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुना जिले में किसानों को कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से जिले के विकास खंडों में कृषि रथ के माध्यम से जागरूकता अभियान का शुभारंभ आज किया गया। मंडला में आयोजित आदि उत्सव के दूसरे दिन रामनगर में जनजाति संस्कृति, इतिहास और गौरवशाली विरासत की छटा देखने को मिली। संपर्क अभियान 2026 के अंतर्गत अशोकनगर जिले में 11 स्थानों पर विद्युत समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: शाम के 7:21 हुए हैं। श्रोताओं, अब वक्त है कुछ संदेशों का।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है। जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
2: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत, चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जयमाला
3: और हंसी का हवा महल, 22 की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
4: सुरीली संदली।
2: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे। जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, 22 करोड़ की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
3: मन का सुकून दिल की आरती
4: सुरीली संदली।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

ये आकाशवाणी का शहडोल केंद्र है। शाम के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आइए चलते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

किसान वाणी सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार, राम राम। रबी फसलों की कटाई हो चुकी है। जब फसलें पूरी तरीके से पक जाती है, गेहूं, चना, सरसों, जौ, मटर जैसी प्रमुख रबी फसलें, तो इसके बाद जो है गर्मी का समय शुरू हो जाता है। गर्मी का मौसम खाली बैठने का नहीं बल्कि खेत की मिट्टी को दोबारा ताकत देने का बेहतरीन मौका होता है। इस दौरान तापमान ज्यादा होने से मिट्टी में जैविक प्रक्रियाएं तेजी से होती हैं। रबी फसलों की कटाई के बाद किसान भाई और बहन मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए हरी खाद, ढेंचा, मूंग लगा सकते हैं या गहरी जुताई कर सकते हैं। साथ ही अगले खरीफ सीजन की तैयारी के लिए मिट्टी परीक्षण, उन्नत बीजों की व्यवस्था और कंबाइन हार्वेस्टर से बची पराली का प्रबंधन भी कर सकते हैं। खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं। कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करने से मिट्टी में

छिपे कीड़े और खरपतवार धूप से नष्ट हो जाते हैं। हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। धान की रोपाई से पहले मूंग, ढेचा, सनई, लोबिया बोकर उसे मिट्टी में मिला सकते हैं और इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। मिट्टी की जांच भी करा सकते हैं। आगामी फसल के लिए उर्वरक के सही उपयोग के लिए मिट्टी का सैंपल लेकर कृषि विज्ञान केंद्र से आप जांच करा सकते हैं। साथ ही अगर पानी की सुविधा हो किसान भाई, तो मूंग, मक्का या चारे की फसल जैसे ज्वार, बाजरा बोकर भी अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। अगर किसान भाई और बहन कुछ तरीकों को अपनाएं तो आने वाले सीजन में अच्छी पैदावार के साथ साथ जो रासायनिक उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, इनका भी खर्च कम कर सकते हैं। जैसे गहरी जुताई करने से मिट्टी की प्राकृतिक सफाई होती है। फसल कटने के बाद जो है खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इसके लिए मोल्ड बोर्ड या डिस्क हल सबसे अच्छा रहता है। इसके फायदे ये हैं कि गर्मी में जब अभी तापमान लगभग 40-45 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो गहरी जुताई करने से धूप 6 से 8 इंच अंदर तक पहुंचती है और मिट्टी अपने आप साफ हो जाती है। मिट्टी में दबे हुए फफूंद, कीड़ों के अंडे, सूत्रकृमि नष्ट हो जाते हैं। मई जून के महीने में कम से कम 2-3 बार जुताई जरूर करें, पहले गहरी, दूसरी हल्की और तीसरी बुआई से पहले। इसके अलावा जो पराली जो होती है, जो अभी गेहूं की कटाई के बाद या रबी की फसलों की कटाई के बाद जो अवशेष बच जाते हैं फसल के, ये कचरा नहीं है, ये खाद है। धान की पराली, गेहूं की पराली जलाना मिट्टी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पराली जलाने के नुकसान ये है कि ऊपर की 1 इंच मिट्टी के सारे फायदेमंद जीवाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं। 1 एकड़ की पराली जलाने से करीब 12 किलो नाइट्रोजन, 2 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटास जलकर ही नष्ट हो जाता है। मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता भी 30 से 40% क्षमता है वो घट जाती है। इसका सही तरीका क्या है कि सुपर सीडर या मोल्ड बोर्ड हल से पराली को खेत में मिला दें, 5 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें या गोबर का जो घोल है वो डालें। 45 से 60 दिनों में पराली सड़कर अच्छी खाद बन जाती है। इसके अलावा गर्मी के दिनों में जो है आप हरी खाद भी लगा सकते हैं, प्राकृतिक नाइट्रोजन का खजाना है। गर्मी में हरी खाद वाली फसलें उगाना सबसे सस्ता और असरदार तरीका है। कौन सी फसलें लगानी चाहिए, तो सबसे जो प्रमुख फसल है इसके लिए वो है ढेंचा। इसकी बुआई जो है मार्च अप्रैल में की जाती है। खेत में मिलाने का समय 40-45 दिन बाद। 150 से 200 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ इससे मिल सकती है। इसके अलावा सनई जो होता है, सनई की जो बुआई है ये भी मार्च अप्रैल माह में खेत में मिलाने का समय जो होता है 50 से 55 दिन के बाद, और सूखा सहन करने की क्षमता भी है इसकी। ग्वार भी लगाया जा सकता है, इसकी बुआई भी अप्रैल मई में होती है और खेत में मिलाने का समय 45 से 50 दिन के बाद। कम पानी में भी ये अच्छी बढ़त दे सकता है। इसका तरीका यह है कि 20 से 25 किलो बीज जो है प्रति एकड़ डाला जाना है। इसके बाद जो है जब 50% फूल आ जाए तो फसल को मिट्टी में मिला दें, हल्की सिंचाई करें और 15 से 20 दिन बाद मुख्य फसल बोएं। इस तरीके से 200 से 250 किलो यूरिया के बराबर नाइट्रोजन मिल जाती है। इसके अलावा जो है गर्मी के मौसम में जैविक खाद भी तैयार किया जा सकता है। गर्मी में तापमान ज्यादा होने से जैविक खाद जल्दी तैयार हो जाती है। वर्मी कम्पोस्ट 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा बनाएं। वर्मी कंपोस्ट के लिए गोबर और कचरे की परत लगाकर 500 से 1000 केचुए डाले जा सकते हैं। गर्मी में 45 से 60 दिनों में ही खाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा नाडिब जो कंपोस्ट होता है, इसके लिए 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा, जो वर्मी कंपोस्ट में 3 फीट चौड़ा लिया जा रहा था यहाँ 6 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा ढांचा बनाए। गोबर, कचरा, पुआल और मिट्टी की परत लगाए जा सकती है। 3 से 4 महीने में खाद तैयार हो जाती है। इसके फायदे हैं कि 1 टन वर्मी कंपोस्ट में 2.5 से 3% तक नाइट्रोजन हो सकता है, 1.5 से 2% फास्फोरस और 1 से 1.5% पोटास होता है। मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता भी 20 से 30% बढ़ जाती है। अब मिट्टी की जांच कैसे कराएं, जिसको मृदा परीक्षण भी कहा जाता है, सॉइल टेस्ट कहा जाता है। मिट्टी की जांच करने के लिए गर्मी का समय जो है बहुत ही सही होता है, उपयुक्त होता है। कैसे जांच कराएं, तो इसका जो तरीका है कि खेत के अलग अलग कोनों से 6 से 8 इंच गहराई से मिट्टी के नमूने लें। पास के कृषि विज्ञान केंद्र या मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जो लैब है सॉइल टेस्ट करने की, वहां जांच करा सकते हैं। इसमें जो मुख्य पोषक तत्व होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सूक्ष्म पोषक तत्व है जिंक, आयरन, मैंगनीज और जो इसका भौतिक गुण है पीएच मान, कार्बन जो है, ये सब इसमें जांचे जाते हैं। इसका फायदा ये है कि 20 से 30% उर्वरक यानी फर्टिलाइजर की बचत हो सकती है, जिससे हमारे आय में जो है बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि बचत करेंगे तो खर्च भी कम होगा तो आय में भी वृद्धि हो सकती है और साथ ही साथ 10 से 15% पैदावार भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जिन किसान भाइयों और बहनों के पास तालाब है तो इसकी सफाई भी करने का बहुत ही सही समय है। गर्मी में खेत के पास के तालाबों की गाद निकालकर खेतों में फैला दें। ये जो है खेत की

0: उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगा। तालाब की गाद में 1 से 2% नाइट्रोजन, 0.5 से 1% फास्फोरस और 1 से 1.5% तक पोटास हो सकता है। केमिकल उर्वरक, रासायनिक जो उर्वरक है, इसकी जरूरत 25 से 30% तक कम हो सकती है। तालाब गहरा होने से गर्मी में पानी सूखता नहीं है, और इसके अलावा जो है सोलराइजेशन, जिसको धूप से कीट नियंत्रण कहा जाता है, ये भी गर्मी के दिनों में किया जा सकता है। यह आधुनिक तरीका सूरज की गर्मी से मिट्टी को कीट और रोग मुक्त करता है। इसका तरीका यह है कि खेत की जुताई करके सिंचाई कर दें, फिर पारदर्शी पॉलीथीन से खेत को ढककर जो किनारे हैं उनको मिट्टी से दबा दें, 4 से 6 हफ्तों के लिए ऐसे ही छोड़ दें। पॉलीथीन के अंदर मिट्टी का तापमान 50 से 60 डिग्री तक पहुंच जाएगा और हानिकारक सूत्रकृमि, फफूंद, कीड़ों के अंडे और खरपतवार के बीज नष्ट हो जाते हैं। ये कहाँ के लिए फायदेमंद है? ये नर्सरी, सब्जियों, फूलों और मसालों की खेती करने के लिए तरीका बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा जो है गर्मी के समय में खेत की मेड़ों और नालियों की मरम्मत भी की जा सकती है। गर्मी के समय खेत की मेड़ों और पानी की जो नालियां हैं इनको ठीक करने के लिए सबसे सही समय है। टूटी फूटी मेड़ों को ठीक करके मजबूत बनाएं, सिंचाई वाली नालियों को साफ करके उसमें जमी गाद निकालें। मेड़ों पर बबूल और सहजन यानी मुनगा जैसे उपयोगी पेड़ आप लगा सकते हैं, और भी कई पेड़ लगा सकते हैं मेड़ों पर। तो गर्मी के महीनों में की गई ये छोटी छोटी जो कोशिशें होती है वो आने वाले पूरे साल की खेती को मजबूत बनाती है। किसान भाई और बहनों, गहरी जुताई, पराली प्रबंधन, हरी खाद, जैविक खाद, मिट्टी की जांच, तालाब की सफाई, सोलराइजेशन, ये सभी मिलकर मिट्टी को सेहतमंद और उपजाऊ बनाते हैं। और कहा भी गया है कि स्वस्थ मिट्टी ही समृद्ध किसान की पहचान है, तो इन तरीकों को आप अपनाकर गर्मी का जो मौसम है उसका सदुपयोग कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: किसान भाइयों और बहनों मत्स्य पालन यानी कि फिश फार्मिंग जो है भारतीय किसानों के लिए आय बढ़ाने का बहुत ही एक अच्छा अवसर प्रदान करता है मौका देता है जो पारंपरिक खेती के साथ साथ रोहू कतला और मृगल जैसी मछलियां पालकर बहुत ही कम समय में ये अच्छा लाभ दे सकता है सरकारी योजनाओं के साथ साथ इसमें सब्सिडी भी मिलती है साथ ही केसीसी में भी कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होता है इसमें टंकी और तालाब बनाकर मछली का पालन किया जा सकता है फसल के साथ साथ मछली पालन से हमारे किसान भाई और बहन अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं पारंपरिक तालाब केज कल्चर और आधुनिक बायोफ्लॉक तकनीक का उपयोग करके बहुत ही अच्छी आय अर्जित की जा सकती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी कि PMMSY के तहत सरकार मछली पालन के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए ऋण और सब्सिडी प्रदान करती है ताकि मछुआरे हमारे किसान भाई और बहनों के परिवार की आय बढ़ सके मछली पालकों को केसीसी के जरिए 5 लाख रुपए तक की भी कार्यशील पूंजी मिल जाती है सब्सिडी मिलता है और साथ ही साथ जो है अपने क्षेत्र में मछली की मांग और जलवायु के अनुसार प्रजातियां जैसे रोहू कतला मृगल का आप चयन कर सकते हैं साफ पानी और अच्छी मिट्टी वाले स्थान का चयन करना चाहिए अपनी पूंजी और जगह के अनुसार जो भी उत्तम जो तकनीक होती है वो अपना सकते हैं गुणवत्तापूर्ण फिंगरलिंग यानी जो मछली के बच्चे होते हैं वो अच्छी हैचरी से खरीदें और उच्च प्रोटीन वाला जो पूरक आहार होता है जैसे सरसों की खली चावल का चोकर जो होता है भूसा वगैरह ये आहार के रूप में दे सकते हैं पानी की गुणवत्ता और साथ ही मछलियों की जो बीमारी है इसकी भी समय समय पर जांच होते रहनी चाहिए किसान भाइयों और बहनों हमारा देश भारत दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है पूरे विश्व में और वैश्विक उत्पादन का लगभग 8% का योगदान देता है मत्स्य पालन ग्रामीण परिवारों की आय में 20-50% तक की वृद्धि कर सकता है मत्स्य पालन से जुड़ी एक विशेष जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं तो आइए सुनते हैं
4: आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं मत्स्य पालन व्यवसाय के बारे में कैसे आप इस व्यवसाय से जुड़कर लाभ कमा सकते हैं मत्स्य पालन में दो तरीके से आप व्यवसाय कर सकते हैं एक तो मत्स्य बीज संवर्धन का कार्य करके और मत्स्य पालन का कार्य करके यदि आपके पास

आप 150 रुपए प्रति हजार के रूप से बेच सकते हैं, और जब 30 से 40 दिन का होता है तो वो 350 प्रति हजार से आप किसानों को या बड़े तालाबों के लिए बेच सकते हैं। इस तरह तरीके से आप मत्स्य बीज उत्पादन में भी काफी आय कमा सकते हैं। और यदि आपके पास कम से कम आधा हेक्टेयर तालाब है तो आप उसमें भी उसमें मत्स्य पालन का काम कर सकते हैं। इसमें जो स्थानीय रूप से जो उपलब्ध कतला रोहू मृगल, जिसको बहुत ज्यादा देखरेख की जरूरत नहीं होती है, और पानी में जो उसका प्राकृतिक आहार होता है वो उसको फीड करके भी ग्रोथ करती है। अगर आपको एक साल में और ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो आप उसके लिए जो स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थ को दे सकते हैं, जैसे सरसों की खली, मूंगफली की खली और राइस ब्रान, ये सब आप मछलियों को खाने में दे सकते हैं। और उसको देने का तरीका इस प्रकार है, आप उसको सुबह और शाम को दे सकते हैं। और अगर खाने का वेस्टेज नहीं करना है, उसके लिए आपको जगह जगह पर डंडे गाड़कर उसमें एक बोरे में भरकर आपको थोड़ा सा छेद करना पड़ेगा, जिससे मछलियां जितनी जरूरत होंगी उतना ही खाकर वापिस चली जाएंगी। उससे आपका खाना भी बचेगा, वेस्टेज नहीं होगा, और खाद्य पदार्थ के वेस्टेज होने से जो हानिकारक गैसेस वगैरह उत्पन्न होती है आप उससे भी बचे रहेंगे। एक हेक्टेयर में आप एक साल में कम से कम 3 मेट्रिक टन तक का प्रोडक्शन ले सकते हैं। मत्स्य कृषकों को लाभ देने के लिए विभाग द्वारा, केंद्र शासन और मध्य प्रदेश शासन दोनों के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें तालाब निर्माण दो तरह का है। एक तो मत्स्य बीज संवर्धन के लिए फीड फार्म का निर्माण किया जा रहा है, और मत्स्य उत्पादन के लिए तालाब का निर्माण किया जा रहा है। उसी प्रकार फिश मार्केट की भी आप स्थापना कर सकते हैं। एक तो मोबाइल वैन भी उसके लिए ले सकते हैं, उसके लिए भी लागत राशि का 40% और 7% अनुदान शासन द्वारा दिया जा रहा है। इसके साथ ही RAS, जिसको रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम कहा जाता है, जिसके माध्यम से वृहद मात्रा में आप और कम समय में और वृहद मात्रा में आप मत्स्य उत्पादन कर सकते हैं। आप इस पद्धति से भी मत्स्य उत्पादन कर सकते हैं। किसी के पास कोई तालाब पट्टे पर है, सोसाइटी, समूह या व्यक्ति के पास, तो अपने तालाब में पेन कल्चर और केज कल्चर के माध्यम से भी मत्स्य उत्पादन प्राप्त कर सकता है।

0: किसान भाई और बहनों, बात करते हैं मौसम के पूर्वानुमान की। तो जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो और जहां ग्रीष्मकालीन फसलें जैसे मूंग और उड़द की बुआई हो तो उसे जारी रखें। टमाटर, मिर्च और बैंगन जैसी सब्जियों में नियमित सिंचाई और पोषक तत्व प्रबंधन सुनिश्चित करें। रस चूसने वाले कीटों और फल छेदक कीटों की निगरानी करें और अनुशंसित पौध संरक्षण उपाय अपनाकर इनका नियंत्रण करें। बागों में फूल आने और प्रारंभिक फल बनने की अवस्था में पाउडरी मिल्ड्यू, हॉपर और अन्य कीटों की निगरानी करें। स्वस्थ फल विकास के लिए उचित सिंचाई और पोषक प्रबंधन बनाए रखें। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, शरीर को हाइड्रेट रखें। दोपहर के समय बढ़ते तापमान के कारण लोगों को लंबे समय तक सीधे धूप में रहने से बचने की सलाह दी जाती है। हल्के वजन के, हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने, सिर को कपड़े, टोपी या छाते से ढके। बच्चे और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें, साथ ही जिनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं इनका भी विशेष ध्यान रखें। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD और स्थानीय अधिकारियों जैसे आधिकारिक स्रोतों से मौसम के पूर्वानुमान और अलर्ट पर नजर रखें। मौसम का पूर्वानुमान का ध्यान रखने से किसान भाई और बहन खेत तैयार कर सकते हैं, बीजों की व्यवस्था कर सकते हैं, साथ ही जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर है या नत्रजन है, इसका छिड़काव किस समय करना है, फसल में निराई गुड़ाई कब करना है, इन सब की भी व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही फसल के पकने की स्थिति में तापमान और वर्षा के अनुरूप कटाई करके सही और सुरक्षित स्थान पर रखने के निर्णय भी ले सकते हैं। तो ये मौसम पूर्वानुमान बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए मौसम आधारित कृषि कार्य जो है ये भी बहुत ही आवश्यक है। और आज विशेषज्ञ महोदय इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये जानकारी सुनते हैं। मौसम आधारित कृषि कार्य कैसे करें?
1: किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम किसान वाणी में आज हम बात करेंगे मौसम की, और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है गुरप्रीत सिंह गांधी, जो मौसम वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल में। गुरप्रीत जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले गुरप्रीत जी, हम जानना चाहेंगे, ये बात कर रहे हैं कि मौसम आधारित कृषि कार्य, तो इसमें अभी एक जो हमारी फसल रवि की फसल कटाई हो रही है तो उसके तैयार करने का काम भी चल रहा है, तो इसको तैयार करने में क्या सावधानी रखनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को?
2: सावधानी की बात अगर करें तो जो है हमारा जो मुख्य उपकरण है वो है थ्रेसर। जब हम थ्रेसर से गहाई करते हैं किसी भी फसल की, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखने वाली है कि जो व्यक्ति जो है थ्रेसर में अनाज डाल रहा है तो वो बिल्कुल भी हल्के कपड़े ना पहने, मतलब एकदम उसको चुस्त कपड़े पहनने चाहिए, मतलब ढीले ढाले कपड़े ना पहने, ये सावधानी बहुत आवश्यक है।
1: थ्रेसर पर काम करते समय पूरी तरह से अलर्ट रहें।
2: हाँ, और सावधानी ये रखें कि जिस स्थान पे वो मनुष्य थ्रेसर में काम करने वाला जो व्यक्ति है वो खड़ा है वो बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए वो जगह।
1: जी
2: जी,
1: तो थ्रेसरिंग करते समय अच्छे से ध्यान रखें हमारे किसान भाई, और कोई नुकसान ना हो इसका पूरी तरह से ख्याल रखें। जी, ये तो बात हो गई थ्रेसरिंग की। अब हम जानना चाहेंगे कि मौसम आधारित कार्य में दूसरी फसलों में क्या क्या करने की आवश्यकता है?
2: दूसरी फसलों में जैसा कि हम बात करें अगर सब्जियों की,
1: जी,
2: तो अभी का वर्तमान मौसम है तो उसमें थ्रिप्स और सफेद मक्खी का प्रकोप जो है वो अधिक बढ़ जाता है इस मौसम में, तो उसके लिए जो है आप निरंतर फसलों की निगरानी करते रहें, और अगर

0: आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर अगर कीट का प्रकोप चला गया है तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 मतलब 17.8 SL 10 लीटर पानी में जो है 2 ml का घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं।
1: तो सफेद मक्खी का नियंत्रण इससे हो सकता है
0: जी।
1: तो ये किन किन फसलों में सफेद मक्खी का प्रकोप हो सकता है?
0: देखिए सोलेनेसी कुल के जो भी मतलब फसलें होती है
1: जैसे
0: जैसे आप
1: टमाटर।
0: हाँ टमाटर हो गया आपका बैगन हो गया
1: जी
0: तो इन फसलों में जो है ये सफेद मक्खी का प्रकोप जो है अधिक होता है।
1: तो सफेद मक्खी से काफी नुकसान होने की संभावना रहती है यदि बड़े
0: बिल्कुल
1: पैमाने पर लग रहे हो तो।
0: जी जी बिल्कुल बहुत हानि पहुंचाता है वो।
1: जी तो इसके नियंत्रण की आवश्यकता है हमारे किसान भाइयों को। एक बार आप पुनः नाम बताएं जो आपने दवाई बताई इसके
0: जी
1: लिए।
0: जी जी मैं एक और मतलब दवाई का नाम बता देता हूँ, थायोमेथाग्जाम 25% जो है WG
1: जी जी
0: 4 ग्राम 10 लीटर पानी में आप इसका घोल बनाकर अच्छे से छिड़काव करें और जरूरत पड़ने पर 15 से 20 दिन के बाद फिर से एक बार छिड़काव इसका कीजिए।
1: तो इसे सफेद मक्खी कीट का नियंत्रण हो सकता है।
0: बिल्कुल
1: जी इस समय जो है सो पौधों में और किन किन रोगों की संभावना रहती है?
0: जैसे हम बात करें भिंडी की फसल की तो उसमें जो है रस चूसक कीट के प्रबंधन की हमको आवश्यकता पड़ती है क्योंकि मौसम में बदलाव हो गया है तो इसलिए संभावना और बढ़ जाती है कीटों के प्रकोप की।
1: जी
0: तो उसके लिए जो है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 10 लीटर पानी में 2 ग्राम का घोल बनाकर
1: जी
0: 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर उसमें हम छिड़काव कर सकते हैं जिससे जो है रस चूसक कीट जो है उनमें नियंत्रण हो सकता है।
1: जी तो ये भिंडी में कीट नियंत्रण की बात थी। अब हम जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों के लिए यदि उन्हें मौसम का अनुमान की जानकारी उनके मोबाइल फोन फोन या फिर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर हो जाए तो हमारे किसान भाइयों के लिए अच्छा रहेगा। वैसे आकाशवाणी और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से समय समय पर किसान भाइयों के हित में सलाह दी जाती रही है, लेकिन आप और कोई भी ऐसी व्यवस्था बताएंगे जो हमारे किसान भाई सीधे मौसम की जानकारी ले सके?
0: बिल्कुल भारत सरकार का जो अर्थ साइंस डिपार्टमेंट है
1: जी
0: मतलब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
1: जी
0: तो उसके द्वारा एक दामिनी ऐप मोबाइल ऐप जो एंड्रॉयड फोन जिनके पास है तो वो दामिनी एक ऐप है
1: जी
0: जिससे जो वज्रपात होता है जैसे आकाशीय बिजली का जो एक मतलब गिरने की संभावना होती है जिससे हमारे देश में हर साल जो है 2,500 से 3,000 मनुष्यों की व्यक्तियों की मौत हो जाती है
1: जी
0: तो वो आकाशीय बिजली के कारण होती है। तो ये जो दामिनी ऐप है वो उससे जो है जिस स्थान पर बिजली गिरने की संभावना है तो लगभग आपको 40 मिनट पहले आपको ये जानकारी दे देगी कि इस स्थान पर जो है बिजली गिरने वाली है तो आप जो है खुद भी सुरक्षित हो जाइए और अगर पशुपालक कोई किसान भाई है तो वो अपने पशुओं को जो है कुछ दिनों के लिए बाहर मत ले जाएं तो मतलब उस स्थान पर ना ले जाएं जहां पर बिजली गिरने की संभावना है तो उससे एक बहुत बड़ी बचाव हमारे लिए हो सकता है। और इसके साथ ही साथ एक मोबाइल ऐप है मेघदूत भारत सरकार का जो मौसम विज्ञान विभाग है तो उसके द्वारा एक ऐप निकला है एंड्रॉयड फोन के लिए वो मेघदूत है तो उसमें 5 दिन का पूर्वानुमान हम जान सकते हैं। तो वो मेघदूत ऐप है जिसमें आपका वर्षा कितनी होनी है अगले आने वाले 5 दिनों में तापमान कितना रहेगा आर्द्रता की क्या मतलब स्थिति रहेगी और इसके साथ साथ कौन सी दिशा से हवा चलने वाली है। और एक चीज ये है कि ओक्टा जिसको क्लाउड कवर बोलते हैं मतलब बादल छाए रहेंगे कि बादल साफ रहेंगे तो ये जो है कुछ 6 या 7 बिंदुओं पर जानकारी जो है इसमें मेघदूत ऐप के माध्यम से किसान भाइयों को मिल सकती है। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके मेघदूत टाइप करना होगा और उसके बाद अपना नाम और अपने जिले का नाम अपने राज्य का नाम डाल के आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो जानकारी दी जाती है 5 दिन के मौसम पूर्वानुमान की जिसमें पूर्वानुमान के साथ साथ फसलों की और पशुपालन के लिए भी जानकारी रहती है तो वो आपके मोबाइल में ही उपलब्ध हो जाएगी।
1: जी तो ये दोनों ही ऐप काफी अच्छी जानकारी के लिए उपयुक्त हो सकता है हमारे किसान भाइयों के लिए। अभी जैसे कटाई का टाइम है तो मौसम का यदि पहले से जानकारी हुई तो उसी हिसाब से कटाई या फिर थ्रेसरिंग का काम करेंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: तो ये बहुत अच्छी जानकारी थी। हाँ, हम और भी कुछ जानना चाहेंगे कि मौसम आधारित कृषि कार्य क्या हो सकते हैं जो हमारे किसान भाइयों के हित में हो।
0: जी जी जैसा कि अभी का जो मौसम चल रहा है तो आप सभी किसान भाई जानते हैं कि आम का बौर जो है बहुत अच्छी स्थिति में अभी दिख रहा है। लेकिन अगर किसी जगह पे या किसी किसान भाई को ऐसा लग रहा है कि मतलब बौर जो है गिर रहे हैं, तो उसके लिए आप 20 ppm जो है NAA नेफ्थेलिक एसिड एसिटिक एसिड का आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे जो है बौर झड़ने का जो आपकी समस्या है उससे बहुत आपको निजात मिल सकता है।
1: कितनी मात्रा इसकी होनी चाहिए? जैसे
0: 20 ppm
1: 20 ppm कितने लीटर पानी में घोलना होगा?
0: ये आप जैसे आपके पास जितने पेड़ हैं
1: जी
0: तो आप उस हिसाब से जो है जिसमें पूरा कवर हो सके, जैसे
1: जी
0: कि किसी के पास छोटा पेड़ है तो वो 15 लीटर के स्प्रेयर से ही छींच सकता है, जैसे ज्यादा बड़ा है तो आप फिर उसके लिए जो प्रेशर वाला स्प्रेयर आता है तो उससे आप 200 लीटर से भी एक साथ छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी तो जितनी आवश्यकता है एक पेड़ में पानी की
0: जी
1: उसमें 20 ppm
0: 20 ppm
1: मिला
0: आप
1: करके
0: उसका
1: छिड़काव कर
0: सकते
1: हैं, तो इससे बौर गिरने की संभावना जो है वो कम हो सकती है या फिर रुक जाएगी।
0: जी।
1: इसके अतिरिक्त हम पशुओं में भी जानना चाहेंगे कि मौसम से संबंधित ऐसी क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अचानक से ठंडी से मौसम परिवर्तन होकर के गर्मी की ओर जा रही है और रात में ठंड हो रही है और दिन में गर्मी, तो पशुपालकों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
0: कोशिश ये कीजिए कि पशुओं को चारा जो है आप पशु शेड में ही मतलब पशुशाला में ही आप उसको दे सके, क्योंकि तापमान जो है लगातार तेजी से बढ़ रहा है तो जिससे जो दुधारू पशु हैं तो वो भी उसमें भी मतलब दूध देने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है ज्यादा तेज गर्मी में अगर हम उनको चराई कराएं तो इसके लिए ये है कि आप चारा जो है आप वहीं उनको प्रोवाइड करा सकें।
1: जी तो ये पशुपालकों के लिए सलाह थी। आप हमारे स्टूडियो में आए गुरुप्रीत जी और इतनी अच्छी जानकारी दिए हमारे किसान भाइयों के लिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये आकाशवाणी का शेड्यूल केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। श्रोताओं, अब चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर और सुनते हैं इस सप्ताह संसद में।
3: भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल AI समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले G20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी, और ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था, ये आज के भारत का मिजाज बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भारत ने चलाया, दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में से एक भारत ने चलाया। जिस स्केल पर भारत डिजिटलाइजेशन कर रहा है वो अभूतपूर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत चला रहा है, और हाँ, चांद पर भी भारत वहां पहुंचा जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाया था।
4: ऐसे समय में जब तमाम हम चीजें देख रहे हैं, वर्ल्ड में कई सारी चीजें नजर आ रही हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है कितना महत्वपूर्ण है और इसके मायने क्या हैं?
5: विश्व में बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा जो ये वाला जो दशक है शायद ही आपदा का दशक माना जाएगा, डेकेड ऑफ क्राइसिस माना जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा यहाँ पर आपदाएं आई हैं। एक तो पहले कोविड आया, उसके बाद युद्ध आया, और अभी हम देख रहे हैं जो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्या पूरे विश्व में बहुत इसमें तंगी आ रही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की 5 देशों की ये यात्रा है, 15 मई से 20 मई तक ये हो रही है। कल प्रधानमंत्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में थे, अबू धाबी में थे, वहां पर उनके राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। केवल 2.5 घंटे का वहां पर उनका पड़ाव था, परंतु बहुत ही जिसे कहा जाए ठोस बात हुई और अपने संबंधों को बहुत तेजी से आगे लेकर जाया गया। और 4 देश जो है वो यूरोप के देश है, नेदरलैंड्स पहला पड़ाव है जहां पर कि वो आज है और कल यहां से स्वीडन में जाएंगे, फिर स्वीडन के बाद 2 दिन वहां पर रुककर गोटेनबर्ग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग को एड्रेस करेंगे, और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन जो कि मोदरातना पार्टी से हैं उनके साथ उनकी बातचीत होगी। उसके बाद वो नॉर्वे जाएंगे ओस्लो में, जहां पर कि उनकी बातचीत होगी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जॉन स्टोर के साथ, और वहां पर भी जैसे नीदरलैंड्स में उनकी मुलाकात हुई है अभी वहां के राजा और रानी के साथ, वहां नॉर्वे में भी वहां भी उनके किंग और क्वीन के साथ उनकी मुलाकात होगी। वहां पर नॉर्डिक समिट भी वहां पर ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसके बाद आखिरी पड़ाव होगा उनका इटली में 19 और 20 तारीख को। और सभी जगह जहां जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने द्विपक्षीय संबंधों को तो उसमें और ऊर्जा मिलेगी, परंतु मेरे विचार से एक संदेश पूरे विश्व को भी जाएगा, जो भारत जो बदलता हुआ परिपेक्ष है उसमें बहुत ही एक्टिव है और अपने हितों को आगे ले जाने के लिए बहुत तेजी, बहुत ऊर्जा और बहुत सक्षमता से काम कर रहा है।
4: अशोक जी, आज प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। एक बड़ा स्टेटमेंट है उनका ये। आपको क्या लगता है कि कोविड महामारी और जो जारी संघर्ष है, ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियां हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है?
5: देखिए, बहुत ऐसे विषय हैं जिनमें कि हम नीदरलैंड के साथ अपने संबंधों को, सहयोग को बढ़ाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। जैसे हमारे सेक्रेटरी वेस्ट ने कल जब उन्होंने इसके ऊपर बातचीत की, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है उसको फोकस कहां पर रहेगा, तो उन्होंने कहा 3 T's पर रहेगा, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट, क्योंकि हमारा टैलेंट वहां पर हर यूरोप के देश में जाता है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से जाते हुए कही, उन्होंने कहा ये जो सारा उनकी यात्रा हो रही है 4 देशों में, यूरोप के देशों में, वो इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो कि बिल्कुल ही एक ऐतिहासिक सहयोग जो अग्रीमेंट है वो इस साल के पहले 26 जनवरी को उसको पूरा किया गया। आपके सभी सुनने वालों को ये मालूम होगा बातचीत की शुरुआत, नेगोशिएशंस की शुरुआत 2007 में हुई थी, तो मतलब 19 साल के बाद इसको हम तोड़ तक पहुंचा पाए हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व में जो बदलाव हो रहा है सबको चाहिए, और यही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा, जो हमको सप्लाई चेन ऐसी चाहिए जो कि रिलायबल हो, जो कि स्टेबल हो, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, और दोनों ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था $4 trillion से ऊपर है, यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को अगर देखा जाए तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था करीब $20 trillion के आसपास है, तीसरी सबसे विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जो इनका सहयोग होगा तो इन देशों के लिए बेहतर तो होगा परंतु पूरे विश्व में व्यापार को स्टेबिलाइज करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होगा।
4: अशोक जी, अभी आपने 3 T's का जिक्र किया, और यूरोप की जब हम बात करते हैं तो लगातार बदलते हुए व्यापार नियम देखने को मिलते हैं, कार्बन टैक्स, सप्लाई चेन की बात होती है, जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी भी चर्चा में एक एजेंडा के केंद्र में रहती हैं। तो भारत और नीदरलैंड्स अपने साझेदारी को ऐसे में किन रणनीतिक स्तर तक ले जा सकते हैं?
5: इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, ये उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, परंतु हमको ये भी देखना है क्योंकि अगर पर्यावरण की रक्षा करनी है तो हमारे अपने हित में है, और आपने देखा होगा जो चाहे वो SDG 2030 के हो या फिर हमने अपना जो एक कमिटमेंट दिया है कार्बन फ्री, कार्बन न्यूट्रल अपनी इकोनॉमी को बनाएंगे बाय 2070, और हमने बहुत सारे ऐसे मापदंड किए हैं जो कैसे हम ग्रीन एनर्जी 2030 तक हम कैसे अपने 45% एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को हम ग्रीन एनर्जी के द्वारा करेंगे। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी, आपको याद होगा 2015 में जब कॉप पेरिस में हुआ था, तो वो एक क्षेत्र है जिसमें हम आगे चल रहे हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र है, और जो इंडो पैसिफिक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक पोजीशन दिया है इंडो पैसिफिक के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं जो हमको फ्री, ओपन, स्टेबल, प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक की मांग है उनकी,

0: नेदरलैंड्स तो अपनी गाइडलाइंस उन्होंने दी हैं, इंडिपेंडेंटली दी हैं 2020 में, और भारत का जो स्टांस है वो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, और इसीलिए उसमें हम उनके साथ सहयोग करते हैं। और टेक्नोलॉजी जहां बात है, स्टार्टअप्स की जहां बात है, भारत बहुत इसमें अग्रणी श्रेणी में आ गया है, बहुत तेजी से इसमें काम कर रहा है, और चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, चाहे वो UPI हो जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जो करीब विश्व में जितना भी ये डीलिंग होती हो कैशलेस ट्रांजैक्शंस की, तो उसमें विश्व में आधे से ज्यादा भारत में होती है हमारे यहाँ, तो हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और इन सब में जो यूरोपियन देश हैं, ये सब ही बहुत ही अग्रणी श्रेणी में हैं, और इनके साथ काम करके दोनों देशों के हितों को बहुत फायदा हो सकता
1: है। अशोक जी, भारत और स्वीडन की अब हम बात करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगले अपने दौरे में स्वीडन पहुंचेंगे, तो वहां भी साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की बात जरूर होगी, तो इस यात्रा से क्या चीजें निकल करके आने वाली है, अगर मैं तकनीकी निवेश, रणनीतिक सहयोग और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों की बात करूं?
0: जहां तक टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन है, उसमें तो बिल्कुल सबसे आगे है, अग्रणी है, रक्षा के क्षेत्र में भी वो बहुत आगे है, और अभी हमने ये 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के उसमें उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है साब, जो कि ग्रिपन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है, उनका यहां पर अभी पिछले साल इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में, जो कि हमारे रक्षा के संबंधों को बहुत आगे लेकर जाएगा। ग्रीन ट्रांजिशन में भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं स्वीडन के साथ, और इनको आगे और जोर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जब बातचीत होगी, जैसे मैंने कहा, गोटेनबर्ग में एक समिट को एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन, उसके साथ साथ यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन वो भी वहां पर होंगी, उनसे भी बातचीत होगी, तो जो हमारा इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसको भी आगे कैसे ले जाया जाए, इस क्षेत्र में कैसे आगे ले जाया जाए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र। देखिए, ये वाले देश हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है, पांच देश हैं, आइसलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क है, इनके पास ये छोटे देश हो, उनकी छोटी जनसंख्या हो, छोटा इनका क्षेत्रफल हो, परंतु टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये बिल्कुल ही अग्रणी है, और स्वीडन तो और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो पहला इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था वो 2018 में स्वीडन ने ऑर्गेनाइज किया था, दूसरा वाला 2022 में डेनमार्क में हुआ था, और अभी जब नॉर्वे में फिर से तीसरा इंडिया EU नॉर्डिक समिट होगा, तो इसमें पांच देश के, जो पांच देश मैंने गिनाए हैं, उन सभी देशों के प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे, उनसे बातचीत होगी, और अपने संबंधों को इन सभी क्षेत्रों में आगे कैसे और ले जाया जाए और कैसे गहरा किया जाए, उसके ऊपर बातचीत होगी।
1: अशोक जी, बदलती हुई जो हमारी ब्लू इकोनॉमी, जिसमें हम तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल की बात हो, सस्टेनेबल फिशरीज की हम बात करते हैं, ऑफशोर विंड और ग्रीन शिपिंग, जो कि आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में नॉर्वे के साथ हमारी जो साझेदारी बढ़ रही है, उसको और प्रगाढ़ करने में प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, जहां तक आप नॉर्वे की बात करते हैं, और स्वीडन और फिनलैंड भी काफी हद तक उसी क्षेत्र में आते हैं, डेनमार्क भी उसी क्षेत्र में आता है, ये सब देश वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो चलते हैं। नॉर्वे में फॉसिल फ्यूल्स, गैस, ऑयल बहुत अधिक मात्रा में है, जो कि उनके नॉर्थ सी से, वहां से ऑफ सी जो उनके एक्सप्लोरेशन है उससे लेकर उसका वो प्रयोग करते हैं। आपके सुनने वालों को ये मालूम होगा, जो जब रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूस से तेल लेना, गैस लेना बंद कर दिया था, तो तब नॉर्वे और डेनमार्क से बहुत मात्रा में यूरोप के देशों को यह सप्लाई हुआ था, और नॉर्वे में 95% से ज्यादा जो वहां पर वाहन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मतलब वहां पर फॉसिल फ्यूल के से नहीं चलते हैं, और इसीलिए जब हम भी अपनी एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लू इकोनॉमी की आपने बात की है, और ब्लू इकोनॉमी में भी नॉर्वे बहुत ही अग्रणी है, फिशरीज में वो बहुत ही उसको माहिरता हासिल है, हमारे अपने क्षेत्र में तो हम जिसे कहा जाए पायरेसी है, मरीन डोमेन अवेयरनेस है, साउथ चाइना सी में है, जिसमें हम क्वाड के माध्यम से हम सहयोग करते हैं और देशों के साथ, तो ये इन देशों के साथ भी उन्होंने कैसे इस दिशा में उन्होंने कैसे प्रगति की है, उसको हम देख सकते हैं, उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तो हमारे लिए वाटर सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और वाटर के मामले में चाहे नेदरलैंड्स हो, नॉर्वे हो, फिनलैंड

0: ये सभी देश, स्वीडन हो, इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रगति की है जिनके साथ हम बड़ा अच्छा अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं।
1: जी अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचेंगे और इटली के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको नई गति मिली है हाल के वर्षों में, तो ऐसे में शिप बिल्डिंग की बात हो, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में काम करने की बात हो, तो इटली के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे पूछूं तो इस दौरे का प्रधानमंत्री का क्या महत्व है?
0: जी, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम 2023 में, क्योंकि जॉर्जिया मलोनी वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं प्रधानमंत्री मोदी के, अगर देखा जाए 2023 से लेकर अभी तक 2026 तक 3 सालों में दोनों प्रधानमंत्री करीब 7 बारी एक दूसरे से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में 3 बारी वहां पर गए हैं, परंतु ये पहली बार उनका द्विपक्षीय वहां पर दौरा है, तो इसीलिए इसके ऊपर भारत और इटली के सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इटली सबसे एक बड़ी अर्थव्यवस्था है यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी इससे बड़े होंगे, परंतु इटली भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है, उससे हमारा सहयोग बड़ा अच्छा होता जा रहा है। अगर आप देखें यूरोपियन पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए 2024 में, तो वहां पर जर्मनी की पार्टीज हैं, फ्रांस की पार्टीज हैं, वो इतना अच्छा नहीं कर पाई, परंतु जॉर्जिया मेलोनी की जो पार्टी है उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, तो उनकी शक्ति जो है यूरोप में वो काफी बड़ी है, और भारत और इटली के बीच में, चाहे वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात, तो उसमें भी प्रधानमंत्री मेलोनी बहुत ही एक्टिवली एंगेज्ड है, क्योंकि जो इटली के यहाँ पर मैरिटाइम एरियाज हैं, वेनिस है, जेनोवा है, फ्लोरेंस है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण इसमें काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री की यात्रा हमारे दोनों देशों के संबंधों को और यूरोप और भारत के संबंधों को आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगी।
1: अशोक जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद निखिल जी।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में एक गीत। इसमें बहुत सारी आवाजें हैं, इसमें आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गाना है, आर डी बर्मन का संगीत है, और ये

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं, मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

लापता लेडीज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, राम संपत का संगीत था। अब आपको सुनवा रहे हैं 80 फिल्म का गाना, मोहित चौहान और साथियों की आवाजों में कुमार के बोल, रोचक कोहली का संगीत।

असी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहित चौहान, परंपरा टंडन और साथियों की आवाजों में कुमार के बोल थे, रोचक कोहली का संगीत था। फिल्म है बाजीराव मस्तानी, पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल के स्वर हैं। गीत और संगीत सिद्धार्थ गरिमा के।

ही।

बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत था। पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजें, सिद्धार्थ गरिमा के बोल। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से ब्रेक के बाद।

दोस्तों, विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, समीर के बोल हैं। फिल्म अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: अंग्रेजी में कहते हैं इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। हम बोल रहे हैं विविध भारती से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।

0: से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा।

0: शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा एक में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद यह घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है।

मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का, लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल, और आज के फनकार हैं इनके बेटे, जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

विकी कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विकी कौशल को फिल्मों का माहौल घुट्टी में मिला था।

विकी कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी है और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और उसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं।

थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाएं। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज गायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान। और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव ते चिकन खुराना। इसमें उन्होंने एक

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना।

साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया। जिद है मेरी।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: ध्वनि तरंगों की ताल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का शहडोल केंद्र 102 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। श्रोताओं, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाली विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत में अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।